अर्ध यानी ऐसे। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि इरम जो है वो भी दरअसल इन्हीं का नाम है। आद भी कहा जाता है और इरम भी कहा जाता है। और ये आद जो थे आबाद कहां थे? अहकाफ में। और अहकाफ का वो इलाका जो है वो अम्मान और हजरमूत के दरमियान में यमन के इलाके में एक जगह थी। यमन में हजरमूत आज भी मशहूर है, बल्कि हजरमूत के लोग जो है आपके हैदराबाद में अभी तक भरे हुए हैं। पुराने दौर में जो अरब गए थे हजरमूत से, वो अभी तक हैदराबाद दक्कन में आबाद है। इसीलिए आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप हैदराबाद के रहने वाले लोग हैं, कि आज भी हैदराबाद में माशाल्लाह अरब खाने मिलते हैं, क्योंकि वो अरब आबाद है। बिल्कुल वहां जाके आदमी यानी हैरान हो जाता है, उस वो नाश्ते में देखे फूल बन रही है, कहीं अरीसा बन रहा है, बिल्कुल वो खालिस ठेठ अरब, क्योंकि हैदराबाद के लोग हैं वहां। बारकस पूरा आपका भरा हुआ। और क्योंकि हमारा तो आना जाना होता है, अल्लाह की

अभी कौन ने यही कहा था कि हम समझते हैं कि तुम खुद गुमराही खुदी में पड़े हुए हो, और नूह अलैहि सलाम को जो कुछ कौम कह रही है वही कौम जो है वो कह रही है हजरत हूद ने। और फिर आप अंदाजा करें हजारों साल गुजर गए, जब अल्लाह के नबी सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को दावत दी ईमान लाने की, तो कौम ने क्या जवाब दिया, लफ्ज भी वही, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास

उसका एक भाई सनान उसका नाम था, और उस बदबख्त की ये आदत थी कि उसके कारिंदे और चौकीदार और उसके हर कारे जो हैं वो सड़कों पे और शहरों में और गलियों में फिरते रहते थे, जहां कोई खूबसूरत औरत नजर आए वो छीन ले पकड़। अच्छा, एक अजीब आदत थी कि अगर वो कोई आदमी जा रहा है, वो कहता है जी कि ये कौन है तुम्हारे साथ का, बीवी को पकड़ते। अच्छा, वो कहता है ये मेरी बेटी है या बहन है, छोड़ते, मुझे फिर नहीं पकड़ते। उसकी अपनी एक मंतक थी। अल्लाह आलम चूंकि वो बदकिरदार आदमी था, सोचता कि मैं किसी की बेटी है बहन है, गैर शादी शुदा हो, फिर आगे नस्ल का मसला है और मैं बादशाह हूं, इसलिए चलो कोई शादी शुदा हो तो इल्जाम कम लगेगा और बात नहीं होगी कोई ऐसी बात, हो सकता है। बहरहाल जो भी उसके ख्याल गंदे दिमाग में हों, तो अब भी सारा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, उसको इत्तला मिल गई कि भाई आज तो आपके इलाके से हमने देखा एक ऐसी औरत गुजर रही है कि मारा आई ना अहसन है ना, हमने तो पूरी दुनिया में इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी। उसके आदमी पकड़ने के लिए आ गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि मन हाजी कौन है, उन्होंने कहा उक्ति बहन। उन्होंने कहा अच्छा जो भी है हमने बादशाह के पास ले जाना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारा से कि देखो अपना आप जो मैंने कहा है तुमने भी वही कहना है, क्योंकि नहीं सारे आना वान थी इस वक्त पूरी जमीन पर, इस बार अल्लाह के नाम लेने वाले हैं तू है या मैं, इस वजह से अखुवत दीन तो मौजूद है। इन मलबो मैन है खोतना ईमान वाला भाई होता। उन्होंने कहा तो सारा को लेके जब वो चले गए, और उस वक्त के उस बादशाह ने जब सारा का जमाल देखा तो वो हैरान हो, ऐसी खूबसूरत वो तो बेकाबू होकर बढ़ा बस नऊज़ बिल्लाह हाथ बढ़ाने के लिए। और बीबी सारा ने दुआ की कि या अल्लाह मैं तेरे नबी की असमत हूं, मैं खलील की असमत हूं, अब ये जालिम अगर मेरी तौहीन कर दे, अगर ये जालिम मेरी तनकीस कर दे, तू मुझे इस जालिम से हिफाजत फरमा। तो उसे जब हाथ बढ़ाए हाथ भी वहीं रोके और जमीन में धंस गया, फौरन समझ गया, कहने लगा कि सारा देखो अगर तुम अल्लाह से दुआ करो ना कि अल्लाह ये मेरी बीमारी हटा दे और मुझे निकाल दे जमीन से, मैं तुम्हें बिल्कुल हाथ नहीं लगा। उन्होंने कहा ठीक है हजरत, बीबी साहब ने दुआ की ठीक हो गया। जब ठीक हो गया पांच चार मिनट के बाद फिर खंडाल दिमाग में सवार हो गया, फिर हमला गया बीबी से, फिर उसी तरह बीबी साहब ने दुआ की आप फिर वही लंगड़े हो गए और जमीन में धंस गए। उसने कहा अच्छा बीबी सारा अब मैं बिल्कुल बहसियत एक बादशाह के वादा करता हूं कि आपसे कोई दिया। बीबी सारा ने फिर दुआ की और वो ठीक हो गया। जब ठीक हुआ तो उसने हुक्म दिया कि बीबी हाजरा, बाद उलमा फरमाते हैं कि उसके यहां कनीज थी, लेकिन असल में वो भी किसी बादशाह की बेटी, वो भी कनीजा नहीं। तो बीबी हाजरा को बतौर खादिमा उन्होंने कहा ये कनीज भी ले जाओ, ये आपकी खिदमत के लिए रहेगी और मैं आपको छोड़ता हूं। आपने लोगों को बुलाया और कहा कि ये तुम कौन मेरे पास ले आए, तो कोई जिन्न है और तो है नहीं। उन्होंने कहा जी हमने देखा खूबसूरत है, मैं क्या बता। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे तो किताबों में आता है कि जब बीबी साहबा करीब आई तो इशारा करके पूछा कि महयम क्या हुआ। तो बीबी साहब ने कहा कि रद्दल्लाहु कैदल काफिर वल फाजिर फी नारही, अल्लाह ने उस बादशाह का कुफर उसका जुल्म जो था अल्लाह ने उसके मकर को उसी के ऊपर उलट दिया है, अल्लाह ने मुझे महफूज रखा है, अल्लाह ने मेरी किस्मत की हिफाजत की है और उन्होंने मुझे बीबी हाजरा भी साथ दी है बतौर खिदमत के और हदिया लेके मैं वापस आई हूँ। और फिर यहां से सैयदना इब्राहिम अलैहि सलाम व तस्लीम जो है हिजरत फरमाते हुए आप अरबे शाम में तशरीफ ले आए। वहां जब पता लगा कि कौम के कुछ कुफार ने लूत अलैहिस्सलाम को कैद कर लिया है तो सैयदना इब्राहिम अल खलील अलैहिस्सलाम जो हैं उस दौर में 313 और बाद रिवायात में है कि 318 आदमी लेकर वहां पहुंचे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उनके पंजे से छुड़ाया और इज्जत और एहराम के एहतराम के साथ लेके आए और उसके बाद उनको मुस्तकिलन करिया सुतूम में भेज दिया गया और आपने अपना मकर और मुस्तकर जो है वो अर्ध शाम को बना लिया और वहीं पर आपने एक बहुत बड़ी अजीम इबादत का एक कुब्बा भी बनाया जिसे आजकल सखरा के साथ जो कुब्बा है कहते हैं ये भी इसका बानी जो है वो सैयद इब्राहिम अल खलील अलैहिस्सलाम है। और वहीं जब आप रहने लगे और पहली बीवी जो है बीबी सारा उससे आपकी कोई औलाद नहीं,

वह तू अपने मुल्क में आसमानों में अकेला है और आज जमीन में मैं भी अकेला हूं, तेरी इबादत करने वाला और कोई नहीं, एक अकेला बैठा हूं अब आपकी मर्जी और आपके हर हुक्म पे राजी। उसके बाद जब कुफार ने हुक्म दिया और फैसला किया कि मंजीनीक से फेंके, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फिर हमने भी फरिश्तों को नहीं कहा कि जाएं, हमने भी फिर बराह रास्त हुक्म जारी किया जिसको कुरान ने सूरत साफात में जिक्र फरमा दिया है और दूसरी आयत में भी फरमाया कि

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समय ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है। जिस तरह हमने सुबह ऐलान किया था कि आज हमारे मेहमान होंगे और हेल्पिंग इम्यूनिटी की जो टीम है वो भी हमारे साथ होगी, फोरमैन भी होंगी और नाइफर मैन भी होंगी। और हमने जो पहले हेल्पिंग इम्यूनिटी के फोरमैन थे साकिब तस्नीम, मैंने इस पिछले हफ्ते में 3-4 बार उनसे रابطہ किया, लेकिन मेरा रابطہ उनसे नहीं हो सका। वो टेलीफोन उनका अंगेज हो जाता है। बहरहाल हमारी उनके लिए ऑफर है। मैंने टाइगर ग्रुप वालों को भी कहा था कि आप साकिब साहब को कहें, चूंकि वो आपके ग्रुप के हैं, तो उन्होंने कहा जी हम रابطہ करेंगे, वो भी फोन नहीं उठा रहे। बहरहाल उनके लिए अदारा आपकी आवाज का टाइम हाजिर है, आप उसमें शामिल होना चाहें, इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, तो आप प्रोग्राम में अब भी वो शामिल हो सकते हैं। तो समय इस वक्त हमारे साथ आपके अपने अली जावेद, सबा नवाज और नायला वसीम जो हमारे साथ मौजूद हैं। हम सब मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं।
3: शुक्रिया।
2: अली आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
4: जी बहुत शुक्रिया अंकल आपका और तमाम सामईन को। अस्सलाम वालेकुम।
2: आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
3: बहुत शुक्रिया।
2: तो हम आपसे सभा शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा अली आपसे आज आप स्टार्ट करें।
4: जी बहुत शुक्रिया अंकल। जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि हमने पिछले हफ्ते भी जो हेल्पिंग ह्यूमैनिटी के साबिक चेयरमैन थे साकिब साहब, उनको रابطہ करने की कोशिश की और आज भी आपने रابطہ किया। हमारी ख्वाहिश यही थी कि वो भी शामिल होते तो गलतफहमियां या जो भी लोगों के जहनों में सवाल है, खासतौर पर जो डोनर्स हैं उनके जो सवाल हैं, जो हमें भी आए और आपको भी आए और बहुत सारे इनके हेल्पिंग ह्यूमैनिटी के जो सोशल मीडिया का पेज है उसके ऊपर भी आए, तो वो उनको जवाब दे सकते हैं। मगर बहरहाल जब उनके पास टाइम हो, जिस तरह भी आपने कहा कि वो हमें कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी आपकी आवाज उनके लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं एक दफा फिर खुश आमदीद कहूंगा सबा नवाज को और नायला वसीम को, हमारे लिए बड़ी काबिल मोहतरम है। तो सबसे पहले सबा आपसे हम ये पूछेंगे कि पिछले हफ्ते जो आपने हमें बताया, उस पिछले हफ्ते से कि आज तक कोई आप लोगों की कोई इम्प्रूवमेंट हुई है, कोई आपके मामलात आगे की तरफ बढ़े हैं, खास तौर पे जो आपकी 1.2 मिलियन की अमाउंट बैंक के अंदर स्टक है उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात दीजिएगा, क्योंकि अब लोग जिन्होंने डोनेशन दी हुई है और वो समझते हैं कि 1.2 मिलियन में उनकी भी अमाउंट है, तो वो आप उनको कैसे मैसेज देंगे या सेटिस्फाई करेंगे।
3: जी अली भाई शुक्रिया। मैं आपको ये बता दूं कि पिछले वीक आपसे बात करने तक अभी तक ये हुआ है कि थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में मुझे जाना पड़ेगा और मैं आपको बताऊंगी कि हमारा पुलिस का जो रिपोर्ट हुई थी, मुझे 11 मार्च को पाकिस्तान, उस टाइम में बैठी हुई थी जब मुझे पुलिस का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि आपको HH के बिहाफ पे आपको पे चार्जेस लगाए जा रहे हैं। और मैंने उनसे पूछा था मुझे क्यों, क्योंकि मेरी तो कभी पोस्ट नहीं रही है ऐसी कोई कि आप मुझे इस चीज के लिए चार्ज करें जो कि साकिब तस्नीम ने 2017 से 2020 तक, जुलाई 2020 तक उसका, जून 2020 तक उसका बनता है, तो इसके लिए मुझे क्यों चार्जेस किए। उन्होंने कहा जो हेड होता है हम उसी को चार्ज करते हैं। तो ये वो चीजें थी जो कि मैंने कहा कि ठीक है, और उन्होंने मुझसे पूरा बयान लिया जिसके बारे में मैंने बताया कि जी मैंने बारहा उनसे कोशिश की है मुलाकात करने की, उनको ऑफिशियल मेल्स किए गए हैं, उनको अनऑफिशियल मेल किए गए हैं, उनको थ्रू दूसरे लोगों के मेल्स किए गए हैं कि वो हमें 2070 से 2020 का डाटा प्रोवाइड करें ताकि हम इसको भेज के तो इस चीज को, मामले को क्लियर कर सकें। एनीवेज उसका ये हुआ कि पुलिस वाले ने पूरा, जब मेरे से आधा पौना घंटा बात की उसने, और फिर उसके बाद एक मेल आती है मुझे साकिब तस्नीम की तरफ से जिसमें वही पुलिस वाला अटैच है और साथ इन सामलिंग जहां पे हमने हमारा केस चल रहा है वो भी अटैच है और साथ इख्तिशाम भाई जो कि हमारे कैशियर हैं वो भी साथ अटैचमेंट में है, सीसी में है, और उन्होंने क्या नाम है ये मेल सबको भेजी जिसके अंदर उन्होंने एक वो हिसाब किताब जो था ना 2017 से लेके 2020 तक का वो उन्होंने भेज दिया और उन्होंने लिखा कि इसके जो बैंक के रिकॉर्ड्स है ना वो आपको कैशियर या चेयरपर्सन जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि पुलिस का प्रेशर, जहां तक मेरा ख्याल है क्योंकि मेरी बात नहीं हुई है किसी से, कि पुलिस ने उनको प्रेशर डाला था कि ये आपका काम है, आप कोई चीज उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आप दें। एनीवेज वो चीजें जब भेजी गई वहां पे क्या नाम है उनको, तो उसके बाद क्योंकि मैं एज अ चेयरपर्सन मैंने वो इन समनिंग निम्नल को मेल किया पिछले वीक, और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप उन चीजों को यस करते हैं ताकि मैं आगे से भेजूं, क्योंकि मुझे पता था कि वो यस नहीं करेंगे अली भाई। उसकी मेन वजह, जब आप इन समनिंग निम्नल से इजाजत नामा लेते हो तो उस इजाजत नामे में ये होता है कि आपकी अगर 50,000 से कलेक्शन बढ़ जाती है ना एक साल की, तो आपने क्या करना होता है कि आपने वो रिवीजर की रिपोर्ट वो मांगते हैं, जो कि एक रिवीजर बनाता है, ठीक है। उसके बाद जो सीसी मेंबर्स होते हैं वो उसके ऊपर साइन करते हैं, उस जो रिपोर्ट बनती है उसके ऊपर आपके साइन होते हैं सारे मेंबर्स के कि हाँ जी ये ठीक है। उसके अलावा एक होता है कि अगर आपने वो 50, लेट्स सपोज कि हमने 1,00,000 करोन जमा किया, अगर हम वो 1,00,000 करोन उस साल के अंदर और उस जिस पर्पस के लिए जमा किया गया है वो वहां पे नहीं यूज कर सकते हैं, मतलब एक साल के अंदर वो उस कलेक्टिंग ईयर में नहीं हुआ है यूज वो पैसे, तो वो अगले साल में अगर जाता है तो आपको दोबारा फिर उस साल की रिपोर्ट बना के भेजना पड़ता।
4: थोड़ा सा आपको कट करूंगा सभा माजद के साथ, मुझे ये बताइएगा क्योंकि हमने तो देखा है बल्कि एक अच्छी रिपोर्ट सी थी हमारी सबकी नजर में हेल्पिंग ह्यूमैनिटी की, क्या आप लोग अपने हर साल का, जब से हेल्पिंग ह्यूमैनिटी लॉन्च हुई है आपने अपने हर साल की जो है वो रिपोर्ट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिवीजर के थ्रू सबमिट नहीं की? अगर तो की होंगी तो फिर तो आप लोगों के पास रिकॉर्ड होना चाहिए, अगर प्रीवियस चेयरमैन के पास नहीं है तो फिर आप वो कॉपी जो है रिवीजर से निकलवा सकते हैं। अगर तो आपका सारा डाटा डॉक्यूमेंटेड है तो फिर तो मेरे ख्याल से इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, सिवाय इसके जो लास्ट
3: जी। मैं आपको एक इस सवाल की तरफ मैं आती हूँ, मैं इसको जरा वो दूसरे को ना गौर कर लूं। उसमें ये हुआ कि जब मैंने उनको लिखा तो उन्होंने पिछले हफ्ते मुझे मेल आई है इन समनिंग निम्नल की, जिनमें उन्होंने ऑब्वियस कर दिया है कि हम जो साकिब तस्नीम ने हमें चीजें भेजी हैं वो हमारे लिए उनको ऑब्वियस करते हैं हम ना। अब हम दोबारा से HHNCF वो बनवा रही है रिवीजर से ये चीजें। जो आपने अभी सवाल पूछा ना, आपको याद होगा कि हम हमेशा हर चीज में कहा करते थे कि हमारे स्टेट्स रिवीजर है जो कि हमारी रिपोर्ट्स बनाता, और ये अगर आप HH के पेज पे भी जाके देखें तो वो लगी हुई है रिपोर्ट्स, लेकिन उन रिपोर्ट्स में और जो इन सामलिंग निम्नल की रिपोर्ट्स हैं इनमें फर्क है। इन सामलिंग निम्नल की रिपोर्ट में आपने लिखना होता है आपने कितना कलेक्ट किया, आपने कितना यूज किया, उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन के जो थे खर्चे, मतलब जैसे बैंक के गब्बिया हो गया या फिर कलेक्टिंग बॉक्स हमने बनवाए या कुछ भी ऐसे, वो एडमिनिस्ट्रेशन के गब्बिया निकाल के उसके बाद आपने कितने पैसे थे जो आपने इकट्ठे किए और वो कहाँ पे भेजे गए, जिस पर्पस के लिए इकट्ठे किए गए उसमें, वो रिवीजर की रिपोर्ट कभी भी नहीं बनी। और इस चीज का हमें बिल्कुल इलम नहीं था डे वन से लेके, मैं आपको बताती हूँ आज से 3 महीने पहले शायद मुझे पता चला है, और वो भी इसलिए मुझे पता चला है कि मेरी एक्सेस हुई है क्या उसको कहते हैं HH के ई बॉक्स में, ठीक है। जब HH के ई बॉक्स में मेरी एक्सेस हुई है तो मुझे पता चला कि HH तो पुलिस ही अनमेल हो चुकी है, और वो किस लिए हुई है, क्योंकि साकिब तस्नीम ने 2017 से लेके 2020 तक कोई एक भी रिवीजर की जो होती है जो वो बनाता है क्या नाम है, क्योंकि हमारे ऑफ कोर्स 50,000 से ऊपर हमारी हुई है ये क्या नाम है, अगर उसने भेजी भी है तो वो मंजूर नहीं हुई है, लेकिन उसने कभी भी रिवीजर की रिपोर्ट बना के नहीं भेजी है।
4: तो यानी कि अब ये जितनी भी आप स्टेटमेंट या आप रेडियो के ऊपर अपना मैसेज दे रही हैं, तो ये आप बकायदा जो पुलिस में आप लोगों का केस चल रहा है तो आपने ये रिटर्न उनको स्टेटमेंट दी है या देंगे कि ये हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है?
3: बिल्कुल, क्योंकि देखें अली भाई मैं आज जो कुछ भी यहाँ पे कह रही हूँ, पहली बात रमजान का मुबारक महीना है, दूसरा हम रोजे में है, तीसरी बात ये किसी पे पर्सनल अटैक नहीं है, ये बहुत प्रोफेशनलिज्म है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम तो इस चीज को छोड़ के बैठ सकते हैं। मैंने पुलिस से पूछा अगर आज मैं रिजाइन दे दूं तो, उसने कहा तो तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं रहता है, ठीक है, हम तुम्हें चार्जेस नहीं कर सकते क्योंकि तुम रिजाइन दे दोगी। मसला ये है अली भाई कि हम अगर ये चीजों को अभी चल रहे हैं और एक मैं औरत होने के बावजूद ये पुलिस चार्जेस ये सब कुछ मेरे पे हो चुके हैं, तो आप ये सोचें कि हम किस लिए कर रहे हैं कि हम इस चीज को बचा सकें, इस जो 1.2 मिलियन लोगों का है वो किसी तरीके भी हम उसको बचा के सेव करके, क्योंकि 1.2 मिलियन में से अब जो हमें रिवीजर की रिपोर्ट्स बनवानी पड़ेंगी उसका भी काफी भारी खर्चा होगा, ठीक है, क्योंकि रिवीजर जब आप ऐसे मुसीबत में फंसे होते हो आपको पता है, हमने रिवीजर से हमारी जो जितने कैशियर थे ना पुराने उन सब की टीम बैठी हुई है इस टाइम ये रिपोर्ट बनाने के लिए।
4: हमारी तो अभी भी यही ख्वाहिश है, हमने शुरू में भी कहा कि क्योंकि ये एक बड़ी रिनोन और बड़ी इसकी अच्छी रिप्यूट थी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी की, तो साकिब साहब जो हैं वो अभी भी चाहे बाद में भी नेक्स्ट वीक में भी जब भी, ताकि ये मामला जो है वो बड़े खुश असलूबी से हल हो जाए, क्योंकि हम सब लोगों का इसमें स्टेक हो या ना हो, मगर वो जिन लोगों ने इतने पैसे दिए जो देना चाहते हैं या जो अभी तक दे रहे हैं उन लोगों को डेफिनेटली कंसर्न है। अभी आपने एक जिक्र भी बल्कि किया कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी आप लोगों के इसमें होते हैं, मगर जहां तक हमने कुछ आप लोगों की प्रेजेंटेशंस को पास्ट में देखा था तो उसमें तो ये था कि शायद आप लोगों की जीरो जो है वो कॉस्ट होती है एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की, अगर मैं मुझे सही याद पड़ता है, तो आप इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस ये किस चीज के हैं, क्योंकि जो जिस तरह मुझे पता है कि शायद आप लोगों के कोई एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं होते थे, ऑलमोस्ट नहीं होते थे।
3: जी मैं आपको बताती हूँ अली भाई, ऐसा है कि ये जो मैंने आपको बताया ना एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की ये बात हो रही है, इसके एक और भी मैं आपको बड़ा एक और भी फैक्ट बताते हैं, लेकिन अगर जो बात मैंने की और आप उस पे सवाल पूछ रहे हैं उसमें ये होता है कि जब आपने इन समनिंग निर्णय को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होती है ना उसमें ये रिपोर्ट बनती ऐसे है कि अगर आपने कितना पैसा इकट्ठा किया उसमें से कितना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गया, एडमिनिस्ट्रेशन ये रिपोर्ट की बात हो रही है, ये हमारे एचएच की एडमिनिस्ट्रेशन की फीसिस की बात नहीं हो रही, लेकिन वैसे आपको बता रही हूँ कि जो उनसे एडमिनिस्ट्रेशन की बीच में से काट के उसके बाद कितना पूरा मुनाफा हुआ और उस मुनाफे को आपने किस जगह पे यूज किया ये रिपोर्ट मांगती है, ठीक है। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस की, तो ये वाकई सही बात है कि एचएच हमेशा से उसका पूरा फोकस रहा है कि वो मिनिमल करे, और इसी बात पे जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए साकिब तस्नीम के साथ उनमें से एक वजह ये भी थी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की, कि कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आ रहे थे जहां पे मेरे पास वो एसएमएस भी हैं, हमने आपको याद होगा COVID-19 ये जब शुरू हुआ था तो हम लोगों ने 2020 में एक कंपेन चलाई थी फूड पैकेज की, और उन फूड पैकेज में जिस अदारे को साकिब तस्नीम की और हमारी वहां से थोड़ी सी बहस स्टार्ट हुई, मेरी मोस्टली हुई, कि वो जो अदारा था वो अपने 500 रुपीस चार्जेस कर रहा था सिर्फ वो पैकेज डिलीवर करने का, और मेरा यही, और ये मेरे पास एसएमएस पड़े हुए हैं जो हमारी बात होती रही है, ये पिछले रमजान की बात है जहां पे मेरा यही मौकफ था कि आप जब लोगों से 220 करोड़ ले रहे हैं, ये मैंने रिटर्न लिखा हुआ है, तो आप लोगों को बताएं कि आपका 20 करोड़ जो उनसा 500 करोड़ है ना वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे जा रहा है।
4: थोड़ा सा मुझे बताइएगा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्या आप लोगों का पाकिस्तान में खुद से भी तो छोटा मोटा कोई सेटअप था या कोई आपने कुछ छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ था, तो क्या ये सारे जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनकी आप जिक्र कर रहे हैं तो क्या ये वहां पे आपकी अगर कोई अपनी टीम थी, मैं क्योंकि गेस कर रहा हूँ, तो क्या वो खुद नहीं हैंडल कर सकते थे या आप किसी?
3: ये हमारी अपनी टीम नहीं थी, हमारा एचएच का हमेशा से दूसरे लोगों के साथ हम लोग काम करते रहे, जैसे अखुवत का, हाँ ये है कि अखुवत का हमारा एक गुजरात में एक वो था क्या उसको कहते हैं कर्ज हिस्ना का एक छोटा सा ऑफिस हम लोगों ने वहां पे स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन उसका ये फूड पैकेज के साथ, क्योंकि देखें जी जब फूड पैकेज जाने होते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान के सारे सूबों में हमारी कोशिश होती है कि सारी जगहों पे जाए, सिर्फ एक इलाके को उसका वो ना मिले ना, तो ये एक और अदारा था जिसपे इन्होंने वो 500 रुपया एक पैकेट को डिलीवर करने का लेते थे, और मेरा साकिब तस्नीम से ये सवाल था कि जब 220 करोड़ एक बंदा पैकेज का दे रहा है आप रिक्लेम कर रहे हो कि सारे पैसे गरीबों को जाएंगे, लेकिन क्या आप उनको बता रहे हो कि आपके 20 करोड़ वो सिर्फ पैकेज डिलीवर करने के लिए ले रहे हैं? 500 रुपीस अली भाई एक अमाउंट है, आप सोचे ना अगर हमारे 2400 पैकेट थे ना, 2300 हमारे 2300 पैकेज हमारे गए थे, आप सोचें 500 रुपया एक पैकेज के पीछे, अगर हम क्योंकि तकरीबन 200 पैकेज के बाद आई थिंक कि मैंने 400 पैकेज के बाद मैंने सवाल खड़ा कर दिया कि जी ये 500 रुपया एक पैकेज के पीछे है, आप हिसाब लगाएं 20,000 रुपया बनता है अगर ऐसे, या 20,000 बनता है मेरे हाल में उसका 500 रुपए का। तो मेरा ये सवाल था कि सिर्फ पैकेज डिलीवर करने के ये इतने ज्यादा चार्जेस ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये इट इज टू मच ना। और वहां पे हमारी एक समझें कि इतनी रात को रोजा खोलने के बाद मेरी बहस शुरू हुई और वहीं पे सहरी हो गई थी, जिसमें ये मैंने कहा था कि 500 रुपया आप लोगों को या तो बताएं कि आपके 20 करोड़ हैं जो उनसे वो एडमिनिस्ट्रेशन पे जा रहे हैं, और अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर हमें कोई ऐसा अदारा ढूंढना चाहिए जो कि अल्लाह के लिए फी सबील अल्लाह काम कर रहा हो।
2: मैं सवा आपको रोक रहा हूँ, एक बात को जरा क्लियर कर दें, कितने पैकेज, अगर एक पैकेज पे 500 रुपया जाता है तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हिसाब किताब हम जरा करेक्ट कर लें, कितने कितने हजार पैकेज आपने दिए थे?
3: 400 पैकेज उस अदारे को गए थे, जिसके बाद मैंने ये सवाल उठा दिया था कि 500 रुपया टू मच है मतलब पैकेज के लिए। उसके बाद हमारी ना वोटिंग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने
2: अगर इतना आप प्रेशर कहें कि 400 पैकेज गया था तो 500 करें तो ये तकरीबन बहुत सारे पैसे बनते हैं।
3: जी बिल्कुल एग्जैक्टली,
2: ये तकरीबन 2 लाख के करीब बनते हैं।
3: हाँ जी, उस टाइम के मुताबिक ये तकरीबन 1.5 लाख बना था, जिसपे हमें बहुत ज्यादा एतराज था कि यही 1.5 लाख गरीबों के 5,000 3,000 के पैकेजेस चल रहे हैं, कितनी फैमिलियों के घर
4: दिए जल जाते। आप 2400 पैकेज यानी के पूरा बांटते तो इसका मतलब है कि 1.2 मिलियन नहीं, अगर आप
3: जी एग्जैक्टली
4: आपको 1.2 मिलियन आपका उधर चला जाना था, तो ये तो मैं चले थोड़ा नाइला भाभी को भी लेते हैं इसके कन्वर्सेशन में। तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास, जैसा आपने बताया कि पिछले साल से आप लोगों की, आप प्रेसिडेंट थी और बॉडी चेंज हो चुकी थी, तो क्या ये जो तंजीमी मामलात हैं जिसमें खासतौर पर डिसीजन मेकिंग है, ये तो आप लोगों की जो है वो एग्रीमेंट से या आप लोगों के सिग्नेटरी होनी चाहिए कि जी अगर कोई तंजीम ने कोई फैसला किया तो जब तक प्रेसिडेंट या नायब प्रेसिडेंट या जो जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो इस बजट को अप्रूव नहीं करेगा तो ये नहीं हो सकता, आगे नहीं जा सकता। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप प्रेसिडेंट हैं या आपकी दूसरी टीम और चेंज हो चुकी है, उनको पता ही नहीं और वहां पे जो है आप इतना पैसा जो है वो दे रहे हैं, या आपका प्लान है 1.2 मिलियन देने का, ये कैसे पॉसिबल है?
3: जी मैं आपको ये वाजे कर दूं कि ये प्रेसिडेंट बनी है सभा और मैं नायब प्रेसिडेंट बनी हूं जुलाई में, और ये बात चल रही है पिछले रमजान की, जबकि फॉर्मर प्रेसिडेंट साकिब तस्नीम साहब ही थे, और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई थी और ये सारी बातें शुरू हो गई थी। उसमें फिर हमने, इन्होंने जो फैसला किया था जिस तंजीम के साथ, ये सारे पैकेजेस उधर देना चाहते थे, और जब हमने अंदाजा लगाया कि टोटल हमारे 3300 पैकेजेस डिलीवर हुए हैं पिछले साल रमजान पैकेजेस, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सारे देने हैं, लेकिन इन्होंने 400 तक का उनको यस कर दी थी इदारे को, जिनके जो 500 करोड़ रुपए ले रहे थे, सॉरी, ठीक है। हमने उधर जाके कॉन्फ्लिक्ट शुरू की कि हम वोटिंग करेंगे, हम फिर ऐसा इदारा ढूंढने जाते हैं जो बिल्कुल डिलीवरी फीस ना हो, ठीक है, हम यानी कि वो फीस अभी लीला करें। फिर हमने 2300 पैकेजेस अकूवत को आई थिंक, और तकरीबन 1000 पैकेजेस कजाली को, ये हमने भेजे बाद में, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन फीस जीरो थी। तो ये क्योंकि उन्होंने जिद लगा ली थी हमसे, और उनका यही मौकफ था कि नहीं जी हमने उन्हीं को भेजने हैं, इस बात से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, ये मार्च की बात है। और ये जो आप कह रहे हैं, हम जब
4: मेरा कंसर्न तो यही है, चले पिछले भी जितने भी सालों से आपकी तंजीम चल रही है तो यहाँ तो यही सवाल उठता है, तो क्या जो इतने मामलात होते रहते हैं या होते रहे हैं खासतौर पे फाइनेंशियल, तो क्या आपकी पूरी टीम में इसकी जो अप्रूवल नहीं ली जाती थी, खासतौर पे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं कि जी हम ये करने लगे और हमारी ये कॉस्ट है जो अब हम डिलीवर करने लगे हैं, तो क्या ये नहीं ली जाती आपसे पहले?
3: देखिए शुरू में हम लोग कौंसिल का हिस्सा नहीं थी, ठीक है, तो हमारे सीसी के मामलात होते थे, ये कौंसिल में डिस्कस होती थी चीजें। हम लोग कौंसिल में आई है लास्ट 1.5 साल से, जब तकरीबन इनके रिजाइन देने से 1 साल पहले हम कौंसिल में आई हैं। जब से हम कौंसिल में आई हैं तब से हमने सवाल करने शुरू किए। एक बात आप गौर कीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन जब से बनी है ना, साकिब तस्नीम साहब ही उसके प्रेसिडेंट रहे हैं। अब जब वो चीजें लोग उनसे राबता करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग या जो भी, वो हमें तो नहीं करते थे ना, वो पीआर मैनेजर को या जनरल सेक्रेटरी को तो नहीं करेंगे, वो तो उन्हीं को करते थे राबता। इनका सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि इन्होंने हमें शेयर ही नहीं की, ना कैशियर किसी के साथ, ना किसी जनरल, मतलब कोई टीम में ये बात शेयर ही नहीं हुई, जिसकी वजह से मामलात खराब हुए। जैसे ही सभा बनी है, प्रेसिडेंट तो उनके पास जब SSI, पहले तो उनके पास SSI नहीं थी, ठीक है, HH के ई बॉक्स की, जैसे ही उनके पास आई तब ये सारे कट्टे खुले हैं ना कि इन्होंने 2017 से पेपर वर्क खराब किया हुआ है। मसला ये था कि वो अपने आप को माशाल्लाह बहुत पढ़ा लिखा और एक अच्छा मंझा हुआ डेनमार्क का कारकुन समझते हैं। वो मेरे ख्याल में हमसे शेयर इस वजह से नहीं करते थे कि उनकी ये जो नालायकी हुई है या जो पेपर वर्क खराब हुआ है वो सबके सामने आएगी तो लोग कहेंगे ही इज नॉट अ गुड लीडर एंड नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, तो फिर तो उसकी जगह नहीं बनती है।
4: नहीं, मतलब मेरा उनसे तो चले थोड़ा सा वो इस बारे में जिस तरह आप बता रही हैं इख्तलाफ हम कर सकते हैं, मगर मेरा इख्तलाफ तो उस वक्त की जो आपकी CEC के मेंबर थे, आप तो चले साल दो साल पहले आई हैं, तो उन लोगों से भी उतना ही बनता है कि क्या उन लोगों ने उस वक्त की टीम ने कभी इस बारे में पूछा ही नहीं, जिक्र ही नहीं किया कि ये सारे डिसीजन आप खुद ले रहे हैं, क्योंकि जवाब दे तो जिस तरह भी आप पुलिस में जो है वो सभा जवाब दे हैं या आप लोग हैं, तो इस तरह तो वो लोग भी हो सकते हैं कि बैंक में अगर फाइनेंस सेक्रेटरी का कोई नाम है तो वो अगर उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस होती हैं या उसके नाम से होती हैं, तो ये सारी चीजें तो एक कलेक्टिव टीम का हिस्सा होना चाहिए। तो मेरा तो कंसर्न फिर उनसे भी बनता है जो पुरानी टीम के CEC के लोग थे कि उन लोगों ने ये सवाल उस वक्त क्यों नहीं उठाया कि हमें ये बातें शेयर क्यों नहीं की जाती अगर नहीं की जाती थी तो।
3: अच्छा अली भाई, इसका जवाब मैं दूंगी। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हम थे 18 लोग जिन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें दूसरे कैशियर भी आए, दूसरे लोग भी आए, ठीक है, ये चीजें शेयर होती रही। और जिन जिन लोगों से ना ये साकिब तस्नीम इस दायरे को छोटा करता गया, ये कुछ लोगों को साथ लेके अपने साथ चलता गया और हम लोग ब्लाइंडली उस पे ट्रस्ट करके चलते रहे। जहां पे हमारी गलती है वो है हमारा ब्लाइंडली ट्रस्ट उस बंदे पे, हम उस पे चलते रहे क्योंकि हमें वो इन्वॉल्व रखता रहा। हमारे यहाँ था वोटिंग का सिस्टम, ठीक है, हम उसके पीछे लगे हुए वोटिंग पे यस करते रहे। और पैसों के मामले में अगर आप कहें ना कोई गड़बड़ हुई है, मेरी एक्सेस नहीं है अकाउंट में, मैं आपको देख के नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये बात छोटी है कि उसमें कोई ऐसा नहीं हुई। जब भी कोई फिनेंस का चीज हुई है ओके, तो वो ये हुआ है कि हमारा एक प्रोजेक्ट आया है, प्रपोजल आया, हमने उसको चलाया है, जितना पैसा आया है वो सारा अगर हमें डोनेशन इकट्ठे हमने किए हैं वो साकिब तस्नीम को किए हैं, अकाउंटों में डाले हैं, वहां से वो जितने पैसे की रिपोर्ट बन के आई है वो साकिब तस्नीम मोस्टली बनाता था, क्योंकि वो कहता था कैशियर्स को कि आप लोग जो उनसे आप लोग कैशियर का रोल ले लो, मैं साथ आपके पूरी हेल्प करूंगा। जब वो बन के आते थे हमारा ब्लाइंडली ट्रस्ट था, अच्छा जी इतने पैसे आए ये हमने भेजने हैं, हम लोग गुगन किया करते थे और वो जाया करते थे। दायरा छोटा होता गया क्योंकि जो लोग सवाल उठाना शुरू हुए ना, उनको इतना कुछ जिच कर दिया गया कि एंड में वो लोग दिल लगा के काम नहीं किया करते थे।
4: देखिए बात मेरा, चलें एक और सवाल इसमें से निकला है, बात ये है कि जब आप लोगों ने वोटिंग के थ्रू ही हर चीज को ओके किया और आप लोगों को अकाउंट की एक्सेस ही नहीं है, तो अगर मेरे अकेले के पास अकाउंट की एक्सेस है और मैं जो है आपको ये बताता हूँ कि जी फर्ज करें 1,00,000 करोड़ आया है और शायद इससे ज्यादा हो या कम होगा, मगर मैंने कागजों में 1,00,000 की आपको

0: आप ये नहीं कह सकते कि चेयरटी का काम, क्योंकि देखे मुझे कोई 10,000 रुपया दे गया, ठीक है 10,000 करोड़ दे गया, तो साकिब तस्नीम को तो नहीं पता कि वो मुझे 12 देके गया या 10 देके गया। ये तो चेयरटी का काम तो है ही, ट्रस्ट पे है, जो देता है उसका भी ट्रस्ट होता है, जो लेता है उसका भी ट्रस्ट होता है, जो आगे से भेजने वाले हैं उन पे भी ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट के बगैर तो चेयरटी चल ही नहीं सकती अली भाई।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें देखें हमारा इसमें कोई अल्लाह माफ करे
0: जी, मैं आपको एक चीज कंप्लीट करना चाह रही हूँ। ये जब फैसले होते थे ना अली भाई, तो जू जू लोगों को इसने जिज करना शुरू किया और लोग छोड़ के बैक ऑफ। आज लोग जो कुछ मर्जी के, हम 18 से जब टीम रहेगी ना 5 या 6 की, जब लास्ट हमारे 3-4 लोग निकले ना, उस दिन मुझे याद है कि मैंने बड़े क्लियर अल्फाज में इनको कहा था कि ऐसा मत करें, ये ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगी, वो नहीं काम करते हैं लेकिन कम से कम मीटिंग्स में आते हैं, करते हैं, आप लोग खुदा रहा ये बंदों को मत निकाले। उन्होंने कहा मैं तो नहीं निकाल रहा हूँ, वो खुद रिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका था कि इसको बिल्कुल छोटा करने का। कॉन्फ्लिक्ट पता है कहाँ से स्टार्ट हुआ कॉन्फ्लिक्ट अली भाई, आज अब मैं आपको बताती हूँ कि शहरयार खान अफरीदी 2019 में आया आई थिंक या मैं उस टाइम पे बीच में शामिल नहीं उस इवेंट में हो सकी थी, मेरी मदर बीमार हो गई थी। मार्च में हमारी मीटिंग हुई है या फरवरी में 2020 की ये बात है, ठीक है, उस दिन मेरी हुई है। तो मैंने वहां पे गए, हम बात कर रहे थे, तो बच्चों का रमजान का वो शुरू हो चुका था कि बच्चों ने यंगस्टर ने स्टार्ट करना है, तो वहां पे मैंने इनको कहा कि साकिब भाई आप मुझे बता सकते हैं कि आप बच्चों की एक टीम को, आप कहते हैं इस टीम ने हमको आगे लीड करना है, ये कॉन्फ्लिक्ट का पहला वो मैं आपको बीज बता रही हूँ, आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत एचएच में भी इस चीज के लिए रही हूँ और सब लोग मुझे कहते हैं, मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं मुंह पे बोल देती हूँ जो कुछ मैंने, और इस बात को साकिब भाई कभी बहुत अप्रिशिएट किया करते थे, लेकिन जो उन पे सवाल उठना शुरू हुए तो उन्होंने वो कर दिया। इससे पहले नायला से मैं रस्ते में जाते हुए बात कर रही थी, नायला ये मेरा इश्यू है, इसने कहा अगर तू बात करेगी ना तो समझ ले साकिब तेरे खिलाफ है। मैंने कहा हो जाए लेकिन बात तो मैं करूंगी। बात ये हुई कि मैंने कहा कि आप बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे आगे लेके इसको भड़ेंगे एचएच को, आपने बच्चों को ये चीज भी नहीं सिखाई कि उन्होंने सीरिया फलस्तीन और यमन अफगानिस्तान ये सारे मुल्कों को उन्होंने रखा है गमतैन मिते में, पाकिस्तान कहाँ है, क्या हमारे मुल्क में भूख नहीं है? तो इसने जब मैंने ये सवाल पूछा तो वहां पे एक बहस छिड़ गई, आप इतनी क्यों हैं क्या नाम है अफगानिस्तान के खिलाफ। मैंने कहा भाईजान मैं अफगानिस्तान किसी और के लिए खिलाफ नहीं हूँ, मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान को आप क्यों भूले, अगर आप बच्चों को नहीं सिखाएंगे कि पाकिस्तान को, तो हम तो बच्चों के हाथ में नहीं दे सकते हैं ये चीज, क्योंकि आपने बच्चों को बताना है, वो हमेशा से उनका अरब ममालक की तरफ हो गया है, आप उनको बताएं कि कश्मीर को भी इस क्या नाम है फलस्तीन जितनी जरूरत है। यहाँ पे एक बात करके मैं समझी कि मैंने अपने दिल की बात कर दी और मैं घर आ गई, लेकिन वो ग्रज भाई के दिल से नहीं गई, साकिब तस्नीम ने वो ऐसी ग्रज बांधी कि उसके बाद हर चीज पे जब भी मैं कोई बात कहती थी ना वो मुझे एकदम स्टॉप लगाते थे। उसके बाद दूसरी मेरी इनसे बहस हुई ये रहमा के पैकेज पे 500 रुपए पे, तीसरी मेरी उनसे रमजान के अंदर ही बहस हुई कि इन्होंने पहले रमजान मिते को किया ऑनलाइन, उसके बाद इन्होंने रमजान मिते जब नंबर 2 किया तो मुझे किसी ने फोन करके पूछा ये नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने बीच में ग्रुप में लिखा सीसी में कि हम कैसी सीसी हैं कि हमें पता ही नहीं है कि, उसके बाद ये फरवरी या मार्च की बात है, फरवरी और मार्च के बाद साकिब तस्नीम ने हर चीज का फैसला खुद करना शुरू कर दिया। उसने कहा वाटर प्रोजेक्ट्स, मैंने कहा किधर से वाटर प्रोजेक्ट्स आ गए और किसने कहा कि आपने फलां अदारे को, उसी अदारे को, उस अदारे पे एक्सट्रीम का रुख जाना है साकिब तस्नीम का, और मुझे नहीं पता है, हालांकि उस अदारे की वजह से हमारे पाकिस्तान में भी साकिब तस्नीम को मुख्तलिफ सियासी और क्या नाम है समाजी शख्सियात ने उसको वार्न किया था कि ये अदारा ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका पता नहीं क्या उस अदारे में रुक जाना है। मैंने कहा ये वाटर प्रोजेक्ट्स के पैसे कब आए और आपने कब फैसला किया कि रहमा को देना, नहीं ये नायला ने बात की थी, और वहां पे साकिब का तूफान बदतमीजी शुरू हो गया, उसने इतनी बुरी लैंग्वेज शुरू कर दी, और फिर जाहिरी बात है हम सब आ गए कि आप फैसले कर रहे हैं और अपने बिना पे कर। ये मार्च के बाद जब मेरे अफगानिस्तान की बात हुई और बच्चों की बात हुई ना, उसके बाद अली भाई ये एक्सकलेट करता रहा, और ये इतनी बड़ी स्टोरी है कि मैं आपको बताऊं तो आपके मेरे ख्याल में अगले महीने के पूरे चैनल वो कहना मैं बुक है इस चीज के लिए, लेकिन छोटी छोटी छोटी चीजें, और
1: हम चलें हमारी देखें यही ख्वाहिश है और पूरी कम्युनिटी की भी यही ख्वाहिश है कि ये मामला

0: خوش اسلوبی سے حل ہوں. اگین یعنی کہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ اس میں ثاقب صاحب کو پورا ٹائم نہیں دیا گیا ہے, ان سے آپ کی کال سے پہلے بھی رابطہ کیا گیا. تو وہی ہوگا, مگر دبنگ جس دبنگ طریقے سے آپ لوگ یعنی کہ ہر چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر پولیس کے بھی چارجز ہیں. تو بلکہ ابھی میں نے, مجھے کسی نے بھیجا بھی تھا, میڈیا کے تھرو یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ فیس بک کے اوپر شاید انہوں نے اپنی فیس بک کے اوپر کوئی میسج بھی لکھا تھا کہ شاید آپ ان کے کام کے حوالے سے جو ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک پروپوگینڈا کر رہے ہیں. تو اگین ہم نے انہیں پورا ٹائم دیا ہے, تو جو لوگ انہوں نے بلکہ شاید آپ لوگوں کی طرف پوائنٹ کر کے بھی کہا کہ آپ لوگ اپنے میسیجز کو ڈیلیٹ کریں ورنہ وہ پولیس کو اس سلسلے میں رابطہ کریں گے. تو کیا آپ لوگوں نے اپنے میسیجز ڈیلیٹ کر دی ہیں یا کوئی پلان ہے آپ کا, یا آپ کس طرح اس چیز کو دیکھیں گے جو انہوں نے آپ کے لیے میسج لکھا ہے؟
1: بھائی جان میں نے تو ان کو پیغام بھیجا تھا کہ بھائی جان آپ فرائیڈے کا انتظار نہ کریں, آپ ابھی کریں, میں آئی ایم سو ریڈی. میں میرے پہ آگے اگر ایچ ایچ کی وجہ سے پولیس چارجز لگ گئے ہیں ان کو کیا لگتا ہے, وہ مجھے اصل میں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں پچھلے 5 سال سے پولیس کیا, کہ مجھے ان کو پتا ہے کہ مجھے کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی, اگر ڈرا سکتی تو اتنا ہم نے اس جگہ پہ نہیں بیٹھا. ہاں کچھ لوگوں کو انہوں نے پریشرائز کیا ہے, وہ لوگوں نے ڈیلیٹ کیا ہے میسج اور پھر دوبارہ آ کے انہوں نے لکھا بھی ہے کہ جی ہمیں اپنے فرینڈز کے تھرو کیا نام ہے یہ ڈیلیٹ کروائے گئے ہیں. تو
0: جس معاشرے میں ہم لوگ آپ لوگ رہتے ہیں, کیا اس معاشرے میں ان کا قانون, ڈنمارک کا قانون اتنی بھی آزادی نہیں دیتا کہ آپ اپنی پوائنٹ آف اوپینین یا آپ کا اوپینین اسے آپ شیئر کر سکیں, یا آپ فریڈم آف اسپیچ جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کسی بھی سوشل میڈیا کے فیس بک کے اوپر کمنٹ یا کچھ بھی آپ یا کسی کے اوپر آپ کمنٹ کر سکیں, کیا ان کا قانون اتنی بھی اجازت نہیں دیتا جس طرح کا میسج وہاں پہ شیئر کیا گیا؟
2: جی علی بھائی دیکھیں قانون تو بالکل اجازت دیتا ہے, ہمیں بھی پتہ ہے آپ بھی یہاں کے شہری ہیں, ہم بھی یہاں کے شہری ہیں, یہاں پہ جتنی آزادی ہے اپنی بات کہنے کی آئی تھنک کہیں بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں ایچ ایچ کے اپنے پیج پہ کہ ایچ ایچ یہ نہ کرے. ہم نے ان کو سوچنا چاہیے, اتنے سمجھدار پڑھے لکھے آدمی ہیں, ہم نے ایچ ایچ کے پیج کے اوپر یہ انفارمیشن دی, وہ بھی اس وجہ سے کہ لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ ایونٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں رمضان شریف میں, ہمیں بہت سارے میسیجز ان باکس میں آ رہے تھے, لوگ فونیں بھی کرتے تھے. اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ہم اپنے پیج کے اوپر یہ انفارمیشن ڈالے. تو آپ دیکھیں کہ جب وہ انفارمیشن ڈالی گئی اور اس میں کچھ لوگوں نے جب یہ لکھا کہ یہ اپنے کمنٹس دیے ثاقب کے خلاف, تو انہوں نے ادھر جا کے ان کو تھریٹ کر کے اپنے, ان کا پتہ کیا کام ہے, وہ جہاں بھی کوئی پریشرائز بندہ ان کو ملتا ہے نا, کسی کا چاچا, کسی کا دوست, کسی کا پپا, کسی کا کوئی سسرالی, وہ ان سے کہہ کے وہ پریشر ڈلوا رہے ہیں کہ وہاں سے آپ صاف کریں. دیکھیں انہوں نے صاف کر دیے, لیکن آپ اس سے بڑا اور ثبوت میڈیا کے آگے کیا ہوگا کہ آپ آج بھی جا کے دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میرے سے پریشرائز کروا کے یہ ہٹوایا گیا ہے اور میں اب دوبارہ یہ لکھ رہا ہوں. تو آپ بتائیں اسے, اب مطلب عورتوں کو دیکھ کے کہ وہ سٹینڈ لے رہی ہوں اور وہ کھڑی ہیں انصاف کے ساتھ, جو آپ نے اتنا گند کیا اس کو وہ صاف کرنے کی کوشش میں ہے, ورنہ ہم بھی آرام سے ریزائن دے کے بیٹھ جائیں. مگر وہ جو 1.2 ہے جس کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی ہے نا, میں حیران ہوں ثاقب تسنیم کیسے سو جاتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کے دور میں یہ سارا کچھ خراب کام ہوا ہے, تو وہ سو جاتا ہے اور کمیونٹی کو کہہ رہا ہے کہ آؤ دوبارہ مجھے یہ ڈونیشن دو. مطلب اتنا بے وقوف کیسے بنا سکتا ہے وہ کسی کو, کہ جس کا سوال کمیونٹی ان سے نہیں کرے کہ پہلے آپ 1.2 کا تو ہمیں جواب دیں, آپ کو کیا اتنی جلدی تھی کہ آج آپ ڈی ایم ایڈ کی بساکی لے کے دوبارہ ان ایونٹوں پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ ایچ ایچ کے سارے پروجیکٹ چرا کے,
1: سارے پروجیکٹ علی بھائی
2: حضور کا پروجیکٹ ایچ ایچ کا تھا یہ چرا کے, انہوں نے ہمارا ڈیٹا چوری کیا, انہوں نے ہماری ممبر شپ چوری کی کیونکہ ایس ایس سی ان کے پاس تھی, تو کیا یہ چارجز کم ہے ان کے اوپر؟ آپ خود سوچیے ان چیزوں کو کہ کمیونٹی کو پھر ان کی آنکھوں میں آپ وہ جھونک رہے ہیں کہ جی میں بہت اچھا کام کرتا ہوں سیلف فیم کے لیے. اگر آپ کے دل میں اتنی ہی اللہ کی محبت تھی اور ایچ ایچ کا آپ کو کام اتنا ہی پسند تھا, تو آپ پہلے ایچ ایچ کو آرے لگاتے, اس کے معاملات صحیح کرتے, پھر بے شک آپ اپنی فیم کے لیے ایک نئی آرگنائزیشن کھڑی کرتے. تو یہ سوال کمیونٹی کا بھی بنتا ہے کہ ان سے پوچھے کہ ان کو نیند کیسے آتی ہے, وہ 1.2 لوگوں نے جو پیسہ دیا وہ ان سے سوال کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ وہ پیسے کے جواب دے ہیں. आम नहीं है वो है।
0: डेफिनेटली जी, ये मामलात अगर उनसे मंसूब हैं तो उन्हें इस चीज़ की पूरी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, क्योंकि फेसबुक के ऊपर या और सोशल मीडिया के ऊपर तो क्लैरिफिकेशन वो दे के लोगों को मुतमईन कर लेंगे, मगर जो निज़ाम इंसाफ है जिसमें आप भी आप लोग जिसको फेस कर रहे हैं, उसके लिए तो बाकायदा एक एक चीज़, एक एक पाई जो आप लोगों के अकाउंट में आई और कितनी गई, तो वो तो आपने उनको देनी होगी, तो आप क्लियर होंगे।
1: अरे मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि आप जितने भी सामीन सुन रहे हैं और आप लोग जहां तक ये कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि हम लोग इस चीज में अगर पिस रहे हैं तो किस चीज के लिए पिस रहे हैं? क्या वो 1.2 मिलियन मेरी जेब में जाना है या नायला की जेब में जाना है, या कि ये अल्लाह की रजा के लिए है? हमारा कोई ईगो, हम अपने ईगो को फीड नहीं करते हैं। मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है, एचएच से हटके साकिब तस्नीम एक बहुत ईगो पसंद बंदा है। वो अपने ईगो को करता है, क्या नाम है, फीड कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि क्योंकि आप जब किसी इंसान के साथ 5 साल गुजारते हो, आपको उसकी खूबियों का भी पता होता है, आपको उसकी खामियों का भी पता होता है। और मेरे लिए ये चीज आज बहुत क्लियर है कि ये इंसान अल्लाह के लिए काम नहीं कर रहा, ये इंसान अपने ईगो को फीड करता है।
0: चलें, हमारी यही दुआ है अगेन, क्योंकि अभी आपने बताया कि साकिब साहब फिर कोई अपना कर रहे हैं, जो आज के दिन में हमारी जो है वो इस सिलसिले में नेक तमन्नाएं हर किसी के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पे बीसियों तीसियों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चैरिटी का काम करती हैं पाकिस्तान में। बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आती है देने वाले के ऊपर कि वो खुद पहले तसल्ली करे कि वो जिसको पैसे दे रहे हैं किसी एक शख्स को या ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इदारे को, क्या वो काबिले एतमाद है, यानी आपका पैसा सही मुस्तहिक लोगों तक पहुंचता है या नहीं, ये लोगों को देखना चाहिए। हमारे साथ क्योंकि कुछ और लोग भी शामिल होना चाह रहे थे इस कॉल में, इस ग्रुप में, मगर टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हो सके। हो सकता है बाद में रابطہ हो, तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो इसके अलावा अभी आज के लिए आप कोई कम्युनिटी को मैसेज देना चाहेंगी अपनी तंजीम के
3: अली अगर
0: हवाले
3: टाइम
0: से?
3: है तो मैं एक बात करना चाहता हूँ। अली
0: जी,
3: अली देखें, जिस तरह सबा ने बड़ी तफसील से बताया, नायला ने भी बताया कि ये जो 500 रुपया एक पैकेट पे लगता था, उस पैकेट में होता क्या था जिस पैकेट के लिए 500 रुपया दिया जाता है? दूसरा, ये जो वो जो साकिब तस्नीम साहब जो कहते थे नहीं इसी तरीके से भेज रहे हैं हमने पैसे, वो कौन सा अदारा था जिसको 500 मिलते थे, वो कंपनी कौन सी? दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं कि वाटर पंप, ये वाटर पंप कौन सी कंपनी लगाती थी और एक वाटर पंप कितने का लगता था?
1: भाई क्या नाम है, इस चीज के बारे में मुझे कितने का लगता है, मेरे हाल में 5 to 6 thousand, हमारे पास 1 lakh crore उस प्रोजेक्ट का पड़ा हुआ है जो वाटर पंप का है, ठीक है, और वो वही कंपनी है जो के जिसपे साकिब तस्नीम की बहुत मेहरबान है, उसका नाम रहमा इस्लामिक रिफंड आई थिंक। और क्या नाम है, उसका ये मसला है कि वो जब साकिब तस्नीम पाकिस्तान अपने टूर पे गया था इससे पहले, तो ये बहुत लोगों ने उस पे वाजा किया था कि ये चीज नहीं है। उसके बाद हमारी कुछ वहां पे ऐसी शख्सियात थी जिनको साकिब तस्नीम ने स्पेशल रिक्वेस्ट की है, वो मैसेज भी मेरे पास है जिसमें उसने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज ये रकमा का टैक्स के जो इशू है आप उनको किसी तरीके हेल्प कर सकते हैं क्लियर करने में। मुझे समझ नहीं आती साकिब तस्नीम का ऐसा क्या, क्योंकि हमारे लिए तो जितने भी इदारे होते हैं वो काम करने वाले होते हैं, हमारे लिए तो इस चीज का, और पाकिस्तान में एनजीओ का सिस्टम कुछ और है। जो आप बात कर रहे हैं ना कि उस पैकेट में क्या था, उस पैकेट में यही जो जरूरी चीजें होती हैं, दाल, घी, रूह अफजा, खजूरें, चीनी, चावल, और वो कह रहे थे कि जी हम आटा नहीं दे सकते हैं क्योंकि आटा बहुत भारी होता है, तो हम ऐसे करेंगे उनको 1200 रुपया दे दिया करेंगे। उस बात पे भी मेरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि आपने 500 रुपया लेना, तो आपसे 12 किलो, मतलब 20 किलो आटा नहीं आप पहुंचा सकते उठा के, आपने लेने किस चीज के पैसे हैं? क्योंकि हमारा शुरू से था कि कैश किसी के हाथ में नहीं देना क्योंकि कैश मिसयूज हो सकता है। तो इस वजह से ये भी कुछ बातें थी कि जिसके बारे में था हमारे कंसर्न थे वाटर प्रोजेक्ट्स का, जो उनसे जारी बात है, मैंने आपको जैसे कि बताया मैं इतना डीपली अभी अकाउंट के अंदर जा ही नहीं सकी क्योंकि ये 5 साल का वो था कि मुझे पता चल सके। अभी भी क्या नाम है, पुलिस को भी जैसे मैंने बताया कि आप अपने डाटा से चेक कर सकते हैं कि तब 2 महीने पहले मुझे एक्सेस मिली थी बॉक्स की। सोचिए मैं जुलाई 2020 में चेयरमैनशिप मैंने ली है, और अब भी आके आप सोचे अगर 3 महीने पहले जनवरी में, तकरीबन 8 महीने बाद मुझे ई बॉक्स के अंदर एक्सेस मिली है। सोचें आप, जब भी उसको रिक्वेस्ट भेजनी, उसने आगे से कैशियर को वो बना देता था, क्या नाम है, कैशियर से थोड़ी बहुत तब उसकी बातचीत थी, उसको वो बना देता था मिडलमैन के तौर पे, मतलब किसी भी चीज का एडमिन बनना है, कुछ भी करना है, उसने उसको बना देना है, लेकिन मुझे नहीं वो बनाता था।
2: ये जो आप वाटर प्रोजेक्ट की बात करें ना, ये भी उसी कंपनी ने लगाने थे और उन्हीं के साथ इनका MOU जो है वो साइन हुआ हुआ था, और हम लोग इस बात पे परेशान थे कि साकिब तस्नीम तो किसी को एक मिनट की फेवर देने वाला नहीं है, हम जितना उनको जानते हैं, तो ये उसके ऊपर इतना मेहरबान क्यों है, जबकि सब लोग उसको कह रहे हैं। उस वक्त उनके पास नहीं थी वो सर्टिफिकेट की जिसकी वजह से वो बाहर का पैसा ले सके, तो हम लोग इस बात के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई। हम लोग परेशान थे कि ये तो इस चीज को पहले कहते हैं कि ये हमारे लिए हर्डल है, क्योंकि हमारा पैसा अगर पाकिस्तान गया वो फ्रीज हो जाना है। तो बहरहाल ये एक मामला तो नहीं है ना, कितने मामले, अफगानिस्तान के लिए पैसे जमा करना, अपने बच्चों को ये ना बताना, ये इस कंपनी के साथ काम करना, अपना मतलब ईगो, ईगो इतनी कि मार्च में उन्होंने हमें लिखा कि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं इस कंपनी के साथ ही काम होगा, ये हमारे पास रिटर्न है, इस कंपनी के अलावा कोई भी चीज काबिल कबूल नहीं होगी, यानी उन्होंने खुद फैसला कर लिया था।
1: उसके बाद मार्च के बाद ना, मार्च 2020 से जुलाई जब तक मैं नहीं बनी हूं, उन्होंने हर चीज में, वो कहते हैं ना कि मैं आपको शो करूंगा कि मैं हूं, मेरा यहाँ पे वो चलता है, मतलब उन्होंने फिर उसके बाद ना इस चीज को बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया।
2: बहरहाल देखें, अब हम तो खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह हक के लिए खड़े रहेंगे। ये अमानत थी, अमानत लोगों की है जो हमारे पास है, हम नहीं भाग सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको फॉलो करें और आप लोगों को भी हम अपडेट रखें इस चीज से कि अब क्या हो रहा है और अब मामलात कहां तक पहुंचे हैं।
3: सबा और नायला, मेरा दोनों से सवाल है कि साकिब तस्नीम तो बड़ा जेंटलमैन और बड़ा हार्ड वर्कर, और मतलब पेपर वर्क वो बहुत अच्छा करते थे, खासकर वो ड्राफ्टिंग जो मिनट्स लेते हैं वो बहुत अच्छा लेते हैं। साकिब की ऐसी तो रेपुटेशन नहीं थी जिस तरह की अभी सामने नजर आ रही है। मैंने साकिब को पिछले 3-4 दिनों में फोन भी किया है, मैं अभी भी साथ भी साकिब को मैंने फोन किया है, कॉल तो जा रही है लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहे। अगर अब भी जो साकिब को एक तीसरा चांस है, अगर अब भी वो आपके साथ डिबेट करना चाहें तो आप उनको चांस देने के लिए तैयार हैं?
2: मोस्ट वेलकम। ये कोई हमारा पर्सनल काम नहीं है, ये एक एनजीओ का और ये एक कम्युनिटी की अमानत है जिसमें हम दोनों जवाब दे हैं, और हम दोनों को अपनी बात कहनी चाहिए। अकेले अकेले बात कहने का आई डोंट थिंक सो कि वो इंसाफ रहता है, तो हम तो मोस्ट वेलकम कम्युनिटी को कहेंगे वो आके बात करें हमारे साथ।
1: मैं भी इसी चीज को कहूंगी कि मेरा हमेशा से ये रहा है कि वो अपनी, उनकी अपनी कोई, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि दोनों साइड की आपको सुननी चाहिए, मेरा खुला उनको इस चीज के लिए दावत है, वो आए हमारे साथ बैठें, डिबेट करें, हमारी जो पेपर्स हैं वहां पे हमें बताएं कि जी ये पेपर्स गलत नहीं थे, मैंने ये पेपर्स भेजे, मुझे ये तब से पता था या नहीं पता था, वो हमें बताएं कि उन्होंने किस फोरम पे हमें कब इतला दी थी, और उनके पास भी जारी बात है इस चीज का सबूत होगा अगर उन्होंने किया होगा तो मेरा उनसे खुली इस चीज के लिए, क्योंकि मुझे जहां तक है कि मेरा अपना पेपर वर्क एज अ चेयरपर्सन बिल्कुल मुकम्मल है, मैंने कब उनको ईमेल्स भेजी, कब मैंने उनको रिक्वेस्ट की, कब मैंने उनको पर्सनल मैसेज किए, कब मैंने सवाल उठाए, कब उनके कैसे जवाब आए, मेरे ख्याल में इस चीज में कोई भी नहीं है कि वो 1.2 मिलियन पुलिची एनमिल से हमारे पास है, बैंक के बंद होने का हमारे पास है। मैंने बैंक को पिछले दिनों मैसेज लिखा कि मुझे बिल्कुल ताजा स्टेटस चाहिए कि हमारे पास कितने पैसे हैं, और बैंक ने वही लिखा 1.2 मिलियन और 1700 समथिंग, इवन ओरे भी लिखे। वो मैंने इसलिए लिया कि मेरे पास एक नया स्टेटस हो, ताकि अगर मुझे कल को किसी को दिखाना पड़े तो मुझे पता हो कि मैंने बैंक को मेल करके ये किया है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने किस किस जगह पे किस किस बैंक में अप्लाई किया, उनके रिप्लाइज, उनकी चीजें, साकिब तस्नीम के कब मेरे साथ आए, कब कब मैंने साइन करवाए, किस चीज के लिए करवाए। इनका दोस्त इवन जो कि हमारी फोइनिंग में क्या नाम है HH में साकिब तस्नीम, मेरी पहली मीटिंग एक सिर्फ मीटिंग हुई थी, उसके बाद साकिब तस्नीम ने रिजाइन कर दिया था, उसमें साकिब तस्नीम मैंने आपको बताया 3 नाम लेके आए थे, एक अपने दोस्त का, एक अपने बेटे का एक एचएच की वो क्या नाम है जो कि अब इनकी है यंगस्टर का और एक एक्टिव मेंबर का, चार लोगों का। बेटे का उन्होंने निकाल लिया क्योंकि मेरा उस पे ये था कि आपके फैमिली के बहुत लोग हो चुके हैं एचएच में और ये एक जो हेल्थी होती है ना ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए अच्छा नहीं होता है। उन्होंने वो ये बाकी तीन नाम थे इनके दोस्त का, एक यंगस्टर का जो कि अब इनकी यंगस्टर टीम में है और एक क्या नाम है एक्टिव मेंबर का जो कि हमारी एक्टिव थी, और इनमें से इनके दोस्त को सिलेक्ट किया गया मेजॉरिटी के बोर्ड्स के साथ। और इनके दोस्त ने जब छोड़ा है मेरी क्या नाम है फोइनिंग, बहुत अच्छे भाई हैं, उन्होंने एचएच के लिए बहुत काम किया है, उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम की किल्लत की वजह से सॉरी बहना मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है इट्स ओके फाइन भाई, और उन्होंने कहा एचएच को कभी भी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं करूंगा। लेकिन अब आप ये उनकी सितम जरीफी देखें कि आज वही लोग उनके क्या नाम है सीसी में बैठे हुए हैं जो उन्होंने नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। उसके अलावा आप ये देखें कि हमारे ही प्रोजेक्ट्स वो लोग कर रहे हैं, मतलब कम ऑन, आपने ये तो फिर ईगो को, अगर आप एचएच को बचाना चाहते तो यही ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी चल सकती थी। इवन जिस दिन साकिब तस्नीम ने रिजाइन दिया है उस दिन हम एक बहुत बड़ी मीटिंग में बैठे हुए थे एक्टिव मेंबर्स की, और वहां पे मैंने कहा था साकिब भाई, तब भाई होते थे साकिब भाई क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट खुद लूज कर दी, मैंने कहा आप आए आप बैठ के हमारे साथ बात करें, आप जैसे कहेंगे हम इसको इकट्ठे लेके चलेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम है मेरे प्रेसिडेंटशिप, क्योंकि मैं तो बनना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि ये चीज अच्छे तरीके से हो, लेकिन उनको था कि वो जैसे एक बंदा अकड़ में नहीं रिजाइन देता है, या हो सकता है कि उनको वो सारी डिटेल्स पता हो कि पुलिची अनमिल हो चुकी है, बैंक अकाउंट का मसला हो रहा है, बैंक अकाउंट तब बंद हो चुका था जब उन्होंने रिजाइन दिया।
2: ये दुखी तो, हमें इस बात का कि उन्होंने बैंक अकाउंट बंद होने के बाद क्यों
1: तीन दिन बाद उनका रिजाइन
0: है। अच्छा चले, ऐसा है कि अभी हमारे साथ अंकल मुनीर, मियां मुनीर साहब भी शामिल हैं, मगर मुझे कॉल स्विच करनी पड़ेगी तो हो सकता है थोड़ी सी आवाज उतनी क्लियर ना हो जितनी मेरी आपको आ रही है। वो कमेंट करना चाह रहे हैं इसके ऊपर तो फिर वो आपसे शायद कोई सवाल भी पूछें। तो जी अंकल जी, अभी आप ऑनलाइन है।
4: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अली, आपको अली को और नायला बेटी और सबा को।
1: वालेकुम अस्सलाम।
4: मैं पिछले हफ्ते से ये सुन रहा हूँ, और सबसे पहले नायला और सबा, सच्ची बात यह है कि मैं इसका गवाह हूँ कि आप लोगों ने मिलकर एक बड़े अच्छे बहुत बड़े काज के लिए बड़ी एफर्ट की, आपने अपनी फैमिलीज को अपने बच्चों को साइड पर करके, मैं भी आपको पता थोड़ा बहुत हिस्सा डालता रहा हूँ आपके एच एच में, और आप मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो आप अब तक आप लोग करते रहे। अब मसला ये है कि ये सारी चीजें जिस तरह निकली हैं, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने पिछले हफ्ते से रब्ता किया, पिछले दिनों मेरे ही उधर वर्कशॉप में हमको 20-22 लोग बैठे थे, तो आपके इस हवाले से काफी तफसील से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ बातें बताई थी। अभी मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसलिए कि ऐसे काजज जो है उनको हमने कंटिन्यू रखना है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अली इन बच्चियों को, इसमें मेरे फैमिली मेंबर भी शामिल है, इनको पता है मेरी छोटी बहन इनके साथ है चाचा साहब, इन्होंने इतना वक्त दिया है और एक अच्छे काज के लिए इन्होंने इतना यानी कि एफर्ट करके अपने उन जो नीडी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में उनके लिए ये लोग कुछ करना चाहते थे, अनफॉर्चुनेट गलत सोच की वजह से, गलत एटीट्यूड की वजह से, और गलत यहाँ के कानून और कायदे को ना समझ के ये कुछ चीजें जो है वो नुकसान हुआ है और आगे भी हो सकता है, कम से कम ऐसी चीजें अगर कंटिन्यू नहीं रहेगी तो हमारे बहन भाइयों का बहुत नुकसान होगा। अब सबा और नायला, बात यह है कि मैं आपको ये बताऊं और ये सुनने वाले सुनेंगे कि मेरा भी तल्लक यानी कि इस तरह है, साकिब तस्लीम को मैंने देखा, जो भी कोई अच्छा काम करना चाहे, राजा गफूर हो, मैं हूँ, पाकिस्तान सोसाइटी हो, हमने हमेशा पीछे खड़े होकर सपोर्ट करने की कोशिश की है, हमें बहुत खामियां हो सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहता चाहूंगा क्योंकि ये बातें अभी आपने की हैं, मैं आपकी बात की तायद करते हुए ये कहता हूँ कि जब से मैंने आपको पता कि आपके साकिब तस्लीम पहले ये पीटीआई में आए थे आज से कोई 8-9 साल पहले, वहां जब ये थे और वो साल डेढ़ जो है वो यानी कि मेरे ही ऑफिस में, आप मेरे ख्याल में शायद आपको पता हो थोड़ी बहुत ही चीजें ऐसे रही, कि वहां उठते बैठते थे मीटिंग्स में, वहां इस आदमी का इको जो है, इसका एटीट्यूड जो है वो इस तरह था कि वो एक, और मैं नहीं बात करना चाहता आपको लंबी चौड़ी किसी सियासी पार्टी में, का इस कास के ऊपर ही रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस इंसान ने वहां पर ही अपने सोच अपना तरीकेकार से बहुत सारी चीजों को कम से कम, यानी कि जिनका लिंक पाकिस्तान से था, मुराद सईद आया वो बेचारा बड़ा, या मैं क्या कहूँ कि बड़ा खराब होकर गया और हमारी तरफ देखता रहा, लेकिन हम मजबूर थे जैसे आप मजबूर रही हैं इनके आगे। अब बेटे बात यह है जो मैंने आपसे करनी है, मैं आपको वैसे भी फोन करके करना चाहता था, थोड़ा सा रहा हूँ अपने सेहत की वजह से मशरूफ रहा हूँ इन दिनों। अब बात यह है कि मैं आपको ये ऑन अलग कहता हूँ, किस तरह की सपोर्ट आपको चाहिए। मैं टैक्सेशन का सिस्टम जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ चीजें थोड़ी सी अपने जरूरत के मुताबिक भी जानता हूँ, जिस तरह की सपोर्ट आपको चाहिए मेरी जाती हैसियत में, ये अदारा आपके पर आपकी आवाज आ रही है और पाकिस्तान सोसाइटी की तरफ से जिस तरह की सपोर्ट भी आपको चाहिए, जो भी आपके यानी कि हम मदद कर सकते हैं इस अच्छे काज को कंटिन्यू रखने के लिए और आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए और इस काम को आगे, हमने देखें ये काम पता नहीं कहाँ से चलता आ रहा, आज अब्दुल साद एदी इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो एक अदारा चलता आ रहा है, हमने हम देखते थे, मैं भी देखता, ये अली भी मेरे ख्याल में उसमें हम देखते थे कि एच एच एक बहुत अच्छी तंजीम बन गई है। मैंने सभा लोगों से, आप गवाह हैं इस चीज की, मैंने लोगों को, वो फैमिली आप जानती हैं ब्रॉनबी वाली, मैंने उन लोगों से पैसे दे दिए, कर मैं आप अमाउंट कहने का बताने का नहीं हूँ, आती नहीं हूँ, मैंने लोगों से पैसे दे देकर आपके ये साकिब तस्लीम भाई इनके हाथों दिए और वो सारा, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ पिछले हफ्ते से कि इतनी बड़ी रकम जो है, एक तो वो शायद जाया हो जाए, हम कोशिश करेंगे जाया ना हो, और फिर ऐसे काम करने वाले लोग और उसमें ये बच्चियां जिसमें हम इतने खुश थे कि इतनी बड़ी तादाद में आप बच्चियां अपने, जैसे मैंने पहले कहा, अपने घर को अपने बच्चों को छोड़कर तो ये इस काज में काम कर रही थी, आज आप भी इतनी इस आ रहे, बल्कि आप पर कानूनी नक्ते नजर से, यानी कि ये बद अखलाकी है साकिब तस्लीम की कि वो खुद फेस नहीं कर रहे चीजों को, उन्होंने ये चीज जो है किसी टेक्निकल तरीके से आगे फेंक दी है कि जो कस्टमर नु खाओ जो मर्जी हो मैं सेफ हो जाऊं और अपनी जिंदगी दूसरे नाम पर शुरू कर दी है। मैं बस यही कहना चाहता था अरे एक्चुअली मुझे ये बात का एहसास इसलिए हुआ, मैं भी एक छोटा मोटा सोशल वर्कर हूँ, हमने भी अमानतें जो है यहाँ चाहे कश्मीर जाकर दी या और लोगों का जिस तरह भी हम हाथ बढ़ाते हैं। मैं अपील करता हूँ अपने तमाम बहन भाइयों से इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर जो भी हमें सुन रहा, कि हमें ऐसे अदारों को एक तो सोच कर चलना है, देख कर चलना है, और ऐसी बच्चियां जो मैं सुन रहा हूँ और मैं पहले भी जानता था, मैं इनके दरम्यान रहा हूँ, इनको पता दोनों को जितना भी है, क्योंकि ये हमारी बेटियां, मैं दोनों के वालिदैन को जानता हूँ, अल्लाह ताला जो यानी कि सबा के वालिद इस दुनिया में नहीं है, नायला की वालिदा इस दुनिया में नहीं, मैं इनसे पर्सनली कुछ चीजें भी जानता हूँ। अल्लाह ताला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, इन्हें हिम्मत दे, और मेरी वीडियो हम आपके साथ है, ये मुनीर
2: अंकल आप ही इस बात में ना हमारा जो मौकफ है और वो जो आपकी इस बात ने जो सपोर्ट आपने हमें की ना ये कभी नहीं भुलाई जाएगी, क्योंकि जिस टफ टाइम में हम अकेली खड़ी हैं और हम जो कर रही हैं और जिसके लिए कर रही हैं वो भी आप जानते हैं, इसमें कोई पर्सनल इशू नहीं है, इसमें एचएच जो हमारी तंजीम 5 साल जिस पौधे को हम पानी पिलाती रहीं और पहली वो लेडीज थी जो आगे आई और इस बंदे का हमने इमेज बनाया और वाकई इस बात सच है ब्लाइंडली ट्रस्ट किया और ये ऑर्गेनाइजेशन अब ऐसे जगह पे पहुंच चुकी थी कि मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था और हमने कोशिश भी की साल कि किसी तरीके इसको हम बचाएं और अभी भी लगे हुए हैं। हमारा ये कम्युनिटी से जाहिर है हम वो जवाब दे है नहीं, वल्ला आलम अल्लाह को जवाब देगा, हम जवाब दे हैं, जितनी चीज की हम जवाब दें हम उतना जवाब जरूर देंगे और आपको अपडेट भी करते रहेंगे
4: इंशाल्लाह। बस मैं भी यहाँ बात को खत्म करना चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह विद इन डे टू आपसे रابطे में हूँ, अगर खुद करूंगा और जो जिधर भी हमने टैक्सेशन का मामला हो, तंजीमी मामला में कुछ समझता हूँ, तालिब इल्म हूँ, लेकिन जो कुछ भी मिलकर हम कर सकते हैं अल्लाह ताला के फजल करम से हम आपके साथ हैं। मुनीर अकेला नहीं और भी लोग हैं, हमने ये आपस में सलाह की है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये सारा निजाम जो है जिसमें ये अल्लाह ताला के दीन की खिदमत है, पाकिस्तान की खिदमत है और उन लोगों की खिदमत है जो जो इसके जरूरतमंद है। ये सिलसिला हमने जारी रखना, अल्लाह ताला आपको खुश रखे।
1: बहुत शुक्रिया।
3: सबा नायला, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये आप सबका एक नोबल काज है। इस नोबल काज के लिए देखें, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, कम्युनिटी का नुकसान होगा। अदारों में जब बात जाती है तो सब जो हमारी पर्सनैलिटी है, सबकी पर्सनैलिटी डैमेज होगी, खासकर एज ए फॉरनर जो हमारी पर्सनैलिटी डैमेज होगी। मैंने साकिब साहब को फ़ोन भी किया है, साकिब साहब को मैसेज भेजा है, उन्हें कहा आप अगले हफ्ते आना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा टाइम हाजिर है। साकिब एक बाज़ार तो जो नज़र हमें आते हैं वो एक जेंटलमैन है, डेफिनेट वो इसको फेस करेंगे, पढ़े लिखे हैं। आगे भी सबा मैंने आपको कहा है कि मैंने आपको अगले हफ्ते की हम दावत देते हैं और ऑन एयर जो है वो साकिब को भी दे रहे हैं। मैंने साकिब को लिख के भी मैसेज कर दिया है, उनको मैसेज जो है वो डिलीवर भी हो गया है। तो अगले लिए अगले इतवार को आप तैयार हैं?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम इस कॉज के लिए अपना टाइम अपना हर चीज देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये एक अमानत है और इस चीज को हमने सही लेके आगे चलना है। अगर हम इन रिश्तों में और रिलेशनशिप में फंस के ये सारी चीजें प्रेशराइज होके खत्म कर देंगे तो क्या हमारा इमेज और क्या जाएगा, जैसे कि आपने खुद कहा फॉरनर्स यहाँ पे ऐसे हैं।
3: चलिए अली अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करें।
0: जी बिल्कुल, एक मिनट है, बल्कि हम ये भी कर सकते हैं अंकल कि अगर साकिब साहब को ये लगता है कि वो अकेले नहीं आना चाहते, अपने पूरे पैनल डॉक्यूमेंटेशन के साथ आना चाहते हैं, तो हम जिस तरह आज ग्रुप कॉल कर रहे हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस या अगर स्टूडियोज में आके वो करना चाहें, ताकि ये लोगों के पैसे हैं, इस मामले को बेहतर तरीके से हल किया जाए। इसमें किसी की कोई दिल आजारी या किसी की कोई वो आप कह लें कि वो हम किसी की शख्सियत को सबोताज नहीं कर रहे। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इदारे जो है वो चलते रहना चाहिए और खास तौर पे इस नोबल कॉज में। तो हम एक दफा फिर आपका नायला भाभी और सबा आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने फिर टाइम निकाला, और अंकल मनीज आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और इस नोबल कॉज में जो भी डिस्कशन है इसको सॉल्व करने के लिए अपनी जो है वो ऑफर सर्विस ऑफर की है। तो इंशाल्लाह हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि इसको हम बेहतर तरीके से हल करें। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का,
1: बहुत शुक्रिया आपका अली भाई, मियां मनीर साहब,
0: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
3: समाइन आपके साथ थे आपके अपने होस्ट अली जावेद और सबा नवाज थी हेल्पिंग कम्युनिटी की जो नई सदर हैं, और नायला वसीम थी जो कि नायब सदर हैं, मियां मनीर साहब थे जो कि एक सोशल वर्कर हैं। समाइन हमने कोशिश की कि जो भी मालूमात थी वो हमने आपके साथ शेयर की। अब फैसला आपने करना है, हम कोई पुलिसमैन नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना अपने सामाइन को। साकिब को मैंने पहले भी कहा है कि मैंने टेलीफोन भी किया है, मैंने बिलाल के थ्रू मैसेज भी जो है पहुंचाया, कोशिश की, बिलाल ने मुझे कहा कि मेरा रابطہ नहीं हो सका। मैंने खुद भी साकिब साहब को मैसेज लिखा है, साकिब साहब का एक नाम है एलपी कम्युनिटी में, ये जो 1.2 मिलियन डेनिश क्रोन पड़े हुए हैं ये लोगों की इमानत है, उन हकदारों तक उस इमानत को जो है वो पहुंचना चाहिए। बाकी जब पैसे जो हेल्पिंग इम्यूनिटी के थे, जिस तरह बेदर्दी से 500 करोड़ जो 500 रुपये जो है एक पैकेट पे अखराजात, इस तरह के अखराजात, किसी के पैसे को जो है वो बड़े एहतियात से खर्च करना चाहिए। इमानत जो होती है उस पर जो अपने पैसे से भी ज़्यादा उस पर जो एहतियात करनी चाहिए। साकिब आप एक पढ़े लिखे हैं, आपका जहन यहाँ डिवेल्प हुआ है, आपका एक नाम है, आप अपनी ईगो को छोड़ें, आपने अच्छी आपकी रेपुटेशन है, और आप इस मसले को जितना जल्दी हो सकता है इसको हल करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे पास आएँ, अपनी पूरी टीम के साथ आएँ, अपनी पूरी टीम के साथ शामिल हों, हमें किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, हमारा कोई इस तरह का मामला नहीं है कि हम कोई पार्टी है या कोई फरीक है, हम दोनों के लिए बराबर हैं। यह अदारा आपकी आवाज़ जो है, आप सबकी आवाज़ है, हम आपके लिए बराबर है। साकिब आप यहाँ हमारे पास आते रहे, आपने हमारे साथ बड़ा काम किया है, हमारे दिल हमारे लिए आपके दिल के लिए हमारी बड़ी इज्जत है, आपके लिए हमारी पूरी टीम की इज्जत है। लेकिन ये शॉकेबल जब खबरें मिलती हैं तो अच्छा नहीं लगता, और आपने जो है, मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगा कि किसी को भी किसी सिस्टम में जो है ना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये किसी का पैसा है, अगर आपका ज़ाती पैसा है तो आपका राइट बनता था। ये जो पुलिस का केस या दूसरा तीसरा, मैं नहीं समझता कि अदारों में शिकायतें करना, इस तरह की बातें करना या किसी चीज़ को इन्वॉल्व करना, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। यहाँ तो आपको पता है कि यहाँ कानून के मुताबिक फैसला होगा, जो भी फैसला होगा वो कानून के मुताबिक होगा। आप लोग साथी थे, सबा आपकी साथी थी, नायला आपकी साथी थी, वो आपको भाई करके जो है वो बुला रही हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से बैठ कर इन मामलात को हल कर सकते थे। اب جب آپ نے یہ تنظیم چھوڑ دی ہے تو آپ کا چاہیے تھا کہ آپ پیسہ بھی اسی تنظیم کو دیتے, اور آپ نے پولیس کے چکروں میں ساری چیزوں کو ڈال دیا. اب ریویزر کے پاس جو فیسیں ہوں گی, جو پیسوں کے اخراجات ہوں گے, وہ بھی آپ کے ذمے یہ ساری چیزیں لگیں گی کہ آپ کی وجہ سے ہوا یا تنظیم کی وجہ سے ہوا. تو ثاقب, آپ پڑھے لکھے لو, آپ اگلی دفعہ آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ کو ہم دوبارہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہمارے مہمان بنے. سامعین, ہمارا کام تھا انفارمیشن دینا, جہاں تک ہم انفارمیشن دے سکتے ہیں. ہم کوئی پولیس مین نہیں ہے, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اگلے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
5: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
6: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: वैलुल लिल मुतफ्फिफीन।
3: नाप और तोल में कमी करने वालों के लिए खराबी है।
2: الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون।
3: जो लोगों से नाप कर लें तो पूरा लें।
2: واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون।
3: और जब उनको नाप कर या तोल कर दें तो कम दें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामाइन, आज ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं थिंक टैंक से, ये तोकीर हसन बुखारी साहब जिन्होंने वेंसला पार्टी ज्वाइन कर ली है, ये आज की ब्रेकिंग न्यूज है। जी शाह साहब वेलकम।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके नाजरीन और लिस्टर सबको अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आपने सही बात की है कि मुझे कंफर्म हो गया सब कुछ और मैं परमानेंट मेंबर बन चुका हूं वेंसला का। जैसे कि आपको पता है कि मैं पहले भी काफी पुराना मेंबर था वेंसला का, 34-35 साल मैंने उसके अंदर काम किया और उसके बाद मैं छोड़ के रेडिकेल में चला गया, फिर मैं दूसरी पार्टी को का मशीर भी रहा हूँ। तो अब मैं वापस जो है वो वेंसला में आ गया हूँ क्योंकि इसकी काफी जरूरियात थी, यहाँ के जो सियासी माहौल है उसको सही करने के लिए हमें जरूरत ये थी कि हम ऐसी बड़ी पार्टियों में भी जाएं जिनके अंदर कुछ नरम कोशा जो है वो हम लोगों के लिए है, क्योंकि एक ही पार्टी में सब लोगों का चले जाना या ऐसी पार्टियों को समझना जो कि समझते हैं कि ये फॉरनर के हमायती हैं और उन्हीं में रह कर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब वो इलेक्ट हो जाता है, कोई ना कोई इलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद वो आपको भूल जाते हैं। तो राजा साहब, इसलिए मैंने ये पार्टी जो है ज्वाइन की है।
1: तो शाह साहब, ये पार्टी और टूट फूट का शिकार है, आपने ज्वाइन किया, क्या इसको सीधा करने जा रहे हैं आप?
2: जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये पार्टी जो है जिससे मैं काफी अरसे से बातचीत मेरी हो रही थी और अब मैं परमानेंट मेंबर उनका बन के हूँ और मुझे उनके हेड ऑफिस ने भी कबूल कर लिया, यहाँ के लोकल जो एल्बर्ट टास्क का जो फोरमैन है उनसे भी बात, हर एक चीज, यानी कि मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। और अब जो असल में मसाइल ये है कि क्या हम लोग अपने जो हमारे यहाँ आने वाली नस्लें हैं और जो हमारे बच्चे यहाँ रह रहे हैं, क्या उनके मसाइल के ऊपर हम बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसके बाद मेरे पास जो
1: शरायत उन्होंने मानी है,
2: जी मेरी जो मैंने शरायत उनको लिखी थी उसके अंदर 80% शरायत उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हमारे मुल्क, हमारे डेनमार्क के आइन के मुताबिक है और ये जो चीजें आपने लिखी हैं हम इसको मानते हैं। और उसका मेरे पास रिटर्न मौजूद है और वो ये है कि हम लोग इस मुल्क के आइन की तंजीम करेंगे, इस मुल्क के आइन की हम एहतराम करेंगे, इस मुल्क के जो कानून है अगर किसी कानून पे एतराज है तो उसके ऊपर हम पार्टी भी के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं। और पार्टी का जो आप देखेंगे कि पार्टी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई है पिछले 2 माह के अंदर और जितने पुराने लोग हैं वो दोबारा एक्टिव हो गए हैं पार्टी में। हमारे जो थे अपना सॉन्ग गेल जो के पार्टी के पार्लियामेंट के जो स्पीकर थे फोरमैन, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है, वो भी अब पार्टी में मुशतरक हो गए हैं और काफी पुराने लोग जो हैं उन्होंने वो पार्टी में अब उन्होंने वापस आ गए। और ये कोशिश की जा रही है कि हम जो है पाकिस्तान ना सॉरी डेनमार्क के आइन के मुताबिक पार्टी को चलाएं और पार्टी का जो मंशूर है उसके अंदर है कि सबसे बड़ी जो बात है फ्री हिल के सबके लिए आजादी होनी चाहिए और आजादी किन के लिए है, जिनके जो रिलीजियस हैं उनके लिए भी आजादी है, जो जो आम आदमी है उसको भी आजादी है, सिर्फ आजादी नहीं तो दहशतगरों को आजादी नहीं, क्योंकि दहशतगर किसी भी मुल्क के लिए मैं भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। जी तो
1: राजा साहब आज ने ब्रेकिंग, जी शाह साहब आप कह लें आखिरी फिक्रा कह लें।
2: जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये पार्टी जो है इसके अंदर कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए थे कि जिसकी वजह से पार्टी जो है वो थोड़ी सी गलत रास्ते पे चली थी, लेकिन अब पार्टी का जो वापस आई है और ये पार्टी का मंशूर जो है इंशाल्लाह ताला इस संडे को जो हम बात करेंगे तो उसके ऊपर मैं पार्टी का मंशूर जो है उनकी इजाजत से वादा करूंगा कि हम किस किस लाइन के ऊपर ये पार्टी को लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मेरी 8 को फलके थिंक में मेरी मीटिंग है पार्टी के साथ, तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद जो भी जवाब आएगा वो रिटर्न होगा, और रिटर्न के अलावा हम किसी पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि दो जुबानें रखने से आप अपने अवाम में भी गंदे हो जाते हैं और दानिश सियासतदानों के साथ भी आप गंदे हो जाते हैं। तो लिहाजा मैं वो बात करूंगा, मैं अपने बेनिफिशरी के लिए बात नहीं कर रहा, मैं ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं या हमारी जो बेटियां हैं हमारी जो औरतें हैं इनके हकूक के लिए हम बात कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला कैटेगरी 5 का जो मसला है ये भी मैं बुध वाले दिन वहां पार्लियामेंट में अपने जो कलीग्स हैं पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके सामने जरूर रखूंगा। जी राज
1: शाह साहब,
2: साहब
1: आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया, ब्रेकिंग न्यूज़ दी। आपकी नई पार्टी तो नहीं है, आपकी पुरानी पार्टी, आपको मुबारक हो। आप अपना काम करें, इस मुल्क में जो काम करता है, मेहनत करता है, पार्टियां उसी को जो है वो इकनाइज करती हैं। पार्टी में मेहनत करें, जगह अच्छी मिल जाती है। आपका बहुत शुक्रिया,
2: बहुत बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज़ जी।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से बराज पेश किया जा रहा है। जिस तरह आपने सुबह इंट्रो में बताया था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे, उनमें एक हमारे स्पेशल मेहमान भी हैं जो कि कभी कभार जो है अपना टाइम निकालते हैं और अल्लाह आज़रा पर रोशनी डालते हैं। थिंक टैंक भी हैं ये भी, जो बरतानिया से वहाँ काम भी अपना करते हैं और उसके साथ साथ कम्युनिटी के मसाइल पर अपना प्रोग्राम भी करते हैं, वीलॉग भी करते हैं और लिखते भी रहते हैं और खुलकर लिखते हैं, खुलकर बोलते हैं। मेरी मुराद है शाह जंजुआ साहब। जंजुआ साहब, एक बार फिर आपको कोपेनहेगन की फ़िज़ाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी वालेकुम अस्सलाम राय साहब, बहुत शुक्रिया, और आपके जितने मेहमान हैं उनको भी मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम।
1: वालेकुम सलाम। जजुआ साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त मैं तो समझ रहा था कि शायद आप दर्रे में पाकिस्तान गए हुए हैं।
2: मैं अगर आप ये सोचें कि आपने दिलो दिमाग के साथ, तो वाकयातन मैं पार्लियामेंट की राहदारियों में बैठा था, लेकिन जो मैंने 2 दिन पहले कही है बिल्कुल ऐन वही हुई है, और वो ये थी कि मुज़ाकरात जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होंगे, और नाकामी की जिम्मेदारी जो है वो पीटीआई पर है, क्योंकि पीटीआई के जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे उन्हें खंगालना चाहिए कि वो हैं कौन। अगर आप जो है वो अपना मुकदमा किसी ऐसे बंदे को देते हैं कि जिसका अपना जो है वो क्लेम हो कि ये ज़मीन उसकी है, तो वो ज़मीन आपको तो नहीं देगा, वो तो खुद अपने पास रखेगा और आपका मुकदमा वो जानबूझ के जो है वो हरा देगा। तो पीटीआई के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है।
1: पीटीआई के साथ बिल्कुल ऐसा हुआ है, जबकि किबला हुजूर की दुआएं भी साथ थी।
2: ये बड़ी एक जो है वो बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली और इनकलाब का जो फैसला है ये खाली इमरान खान का नहीं था, ये इमरान खान और उनके कजन जो है वो कैनेडा वाले अलामा बाहिरुल कादरी, उनका था, दोनों का था, और दोनों ने मिलके जो है वो पीटीवी की इमारत पे हमला किया। फिर मिराजुल कुरान के लोग जो है वो उस इमारत के अंदर घुस गए और फिर ताहिरुल कादरी साहब ने जो है वो मुबारक दी। ये सारा कुछ ऑन द रिकॉर्ड है, सारे इस वीडियो को कादरी साहब की आवाज को सुन चुके हैं, लेकिन और कब्रें भी जो पार्लियामेंट के सामने खोदी थी वो भी कादरी साहब ने खोदी थी, इमरान खान ने तो कब्रें नहीं खोदी। वो बेचारा तो दिन को आता था 2-3 घंटे के लिए, वहां पे रक्सो सरूद की महफिल होती, गाना होता, इमरान खान साहब जो है वो अपनी कोई गपियां लगाते और चले जाते। लेकिन इस तब्दीली को और इस इनकलाब को करबला के साथ जो जोड़ने वाली शख्सियत थी वो तो उनके कजन थे, उन्होंने जो है वो ऐसा रंग भरा के पूरी पाकिस्तानी अवाम बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि ये मारकाए करबला है, और इस मारकाए करबला से जो आज पीठ फेर के भाग जाएगा वो यजीदी है, और जो यहाँ पे जम के अपना खून बहा देगा वो हुसैनी होगा। लेकिन फिर वक्त ने देखा कि लामा साहब जो है वो खुद यजीदी काफले में शामिल हो गए और वो पीठ फेर के जो है वो ऐसे भागे कि आज 10 साल से ज्यादा का अरसा हो गया वो पाकिस्तान जाने का नाम ही नहीं लेते, और इमरान खान बेचारा जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है, और इमरान खान ऐसा जेल की सलाखों के पीछे गया कि उसने जिस किसी को भी अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया वो पीटीआई से उसका कोई तलक नहीं था। तो ये तो खान साहब का एक वीएन है कि उन्होंने महमूद अचकज़ई को, जिसका वो खुद फन बनाते थे, उसे जो है वो सेनेट के अंदर अपना नुमाइंदा बना दिया और पार्लियामेंट के अंदर अपना नुमाइंदा बना दिया, फिर अलामा राजा नासिर अब्बास जो है वो उन्हें अपना नुमाइंदा बना दिया, फिर जो है वो एक वकील को ले आए और वो उसको सेनेट का मेंबर मुंतखब कर दिया। तो ये 2 राजे और एक महमूद अचकज़ई, ये टोटल इमरान खान की तरफ से मुज़ाकरात करने वाले हैं, और इन तीनों का मफाद इस बात में है कि इमरान जब तक हो बल्कि मर

0: दम तक वो जेल में रहे, ताकि ये जो है ये पीटीआई के ऊपर कब्जा करके पीटीआई को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते रहे और ओदे सारे इनके पास हो, प्रिविलेज इनके पास हो। तो अगर इमरान खान खुद बाहर आते हैं तो वो तो एक लड़े में इनकी बैक पे जो है वो मुक्का मार के, मैं ठुंडा तो नहीं मारता, मैं पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, कि वो इनकी पीठ पे मुक्का मार के इन्हें उठा के बाहर फेंक देगा, क्योंकि ये लोग तो पीटीआई से थी नहीं, और पीटीआई से जब ये है नहीं है तो ये पीटीआई के वफादार में क्यों मुजाकरात करेंगे। और इन्होंने जितने भी आज तक मुजाकरात किए उनका एंड गोल यही था कि इमरान खान को जेल में रखा जाए और यूं ही हम जो है वो नाम का धरना देंगे, चंद बंदे जो है वो आ जाएंगे, कुछ लोग जो है वो इधर उधर हुकूमत के ऊपर अंडे फेंकेंगे, हुकूमत के ऊपर पुलिस अहकामों को डंडे मारेंगे और जख्मी करेंगे, गोलियां चलाएंगे, लेकिन उनके जो पसे पर्दा जो मकासद है वो ये है कि पीटीआई का या इमरान खान का जो मफाद है वो इसमें है कि हकूमत दहशत गर्दों के सामने सर नगुं हो, हकूमत जो है वो दहशत गर्दों के सामने, इंतहा पसंदों के सामने, अफगानी जितने दहशत गर्द हैं, जितने जो है वो गैर कानूनी पनाहगजीन है, उनके सामने घुटने टेक दे। और पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, पाकिस्तान ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये टोटल है कि पीटीआई की बका, गैर कानूनी तारकीने वतन, अफगानी दहशत गर्दों के साथ भाईचारे में है, और पाकिस्तान की बका उनको रगड़ा लगाने में और दहशत गर्दों का किला कमा करने में है। सोहेल अफरीदी की हुकूमत वहां पे इसलिए कायम है कि उसके जितने मुहाफिज हैं वो सारे के सारे इस तरह के लोग हैं, दहशत गर्द, अफगानी पनाहगजीन, कातल, मफरूर। और किसी भी वजीर आला का काम ये होता है कि वो अपने सूबे के अंदर जो तरक्याती काम होते हैं, अवामी मसाइल होते हैं, उसके ऊपर उसकी तवज्जो होती है। लेकिन सोहेल अफरीदी कहता है कि मेरा मैंडेट तो सिर्फ ये है कि मैं इमरान खान के लिए धरना दूं, तोड़ फोड़ करूं। तो ये तो वजीर आला का विजन है। अब अगर वो इससे हटता है और वो कहता है कि जी नहीं, मैं अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करूंगा, तो इमरान खान अगले ही किसी मुलाकाती को कहेगा कि सोहेल अफरीदी को खत्म करके किसी और को वजीर आला बना दे। तो पार्टी तो इस तरह चल रही है, यानी टोटल इस पार्टी का जो मफाद है या इस पार्टी की जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी, मार धाड़, लूट फूट और इस तरह की जो है वो सिचुएशन बना के रखना है कि पता चले कि गोया पाकिस्तान जो है वो एक नाकाम रियासत है। इमरान खान, आपको याद है कि जब वो वजीर आजम से, तो वो कहते थे कि आज पाकिस्तान बैंकरप्ट हुआ कि कल हुआ, तो वो बार बार आए रोज जो है वो पूरी दुनिया को इसकी नवीद देते थे, लेकिन वो असल में किसी और को खुश कर रहे होते थे। और पीटीआई का आज भी जो मतमय नजर है वो पाकिस्तान नहीं है, हालांकि अगर इनके अंदर कुछ थोड़ा सारा भी सियासी शऊर होता तो ये पीपल्स पार्टी से सबक सीखते। पीपल्स पार्टी जिसकी क्यादत को फांसी हुई, लेकिन उन्होंने पीटीआई को सेपरेट रखा, उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, जो उनसे गलतियां हुई उन केसेस की पैरवी को सेपरेट रखा, तो आज उस पार्टी जो है वो फिर भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, और उसी पार्टी का जो नुमाइंदा है या चेयरमैन है वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है। लेकिन पीटीआई का तरीकाकार ये है कि अगर इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। होना तो ये चाहिए कि पीटीआई का कोई मंशूर होता जो है नहीं है, कोई दस्तूर होता जो है नहीं है, या पीटीआई का मतमय नजर ये होता कि हम पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लेके आएंगे, लेकिन वो बेहतरी लाना उनका मकसूद नहीं है। उनका मकसूद सिर्फ ये है कि दुनिया की किसी भी कीमत पे एक लखंडरे क्रिकेटर को जो है वो पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया जाना चाहिए, और उसके पास एक ही उसके पोर्टफोलियो में है, वो है जो है वो कैंसर हॉस्पिटल। याद रखें कि कैंसर हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तानियों के पैसों से बना, उसमें हर सियासी पार्टी, मजहबी पार्टी, हर एक बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उन सब ने पैसा दिया, तो वो हॉस्पिटल कायम हुआ, लेकिन उसका क्रेडिट एक जमात ले, एक शख्स ले, ये नाजायज है, ये हराम है, ये गैर कानूनी है और ये नहीं होना चाहिए। और फिर इसी इमरान खान के की पैरवी में जो है उसके कजन ने भी जो है वो अपने हर चैरिटीज का क्रेडिट खुद लिया, हालांकि इन्हें चैरिटी कहना ही नहीं चाहिए, ये अपनी अपनी पार्टी और फैमिली की प्रमोशन के लिए बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें जिसमें वो मजहब के नाम पे, जिसमें वो अवामी फलाह बहबूद के नाम के ऊपर जो है वो चंदा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट खुद अपने आप को देते हैं और उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर ये जो है वो सियासी तगड़ो करते हैं। ये बिल्कुल एक गैर कानूनी है, किसी मुहजब माशरे के अंदर इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।
1: जी जुआ साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त तजिया किया, लेकिन इमरान खान की पार्टी में जो उनका वर्कर है, जो उनसे मोहब्बत करता है, वो अपने वज़ीर आज़म से मोहब्बत करता है, अपने पार्टी लीडर से मोहब्बत करता है, तो क्या इमरान खान पर कल्ट्स ने कब्जा किया हुआ है या इमरान खान खुद एक कल्ट्स हैं?
0: इमरान खान या पीटीआई ये कोई पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं है, ऐसे पार्टी नहीं कहना चाहिए। ये इमरान खान को इमरान खान का एक फैन क्लब है। इस फैन क्लब के अंदर जो लोग आते हैं उनकी मोहब्बत इमरान खान से होती है, पाकिस्तान से नहीं होती। जो सियासी पार्टियां किसी मुल्क के अंदर बनती हैं उन सियासी पार्टियों का एक मंशूर होता है और एक दस्तूर होता है, और वो मंशूर और दस्तूर मुल्की फलाह बहबूद के लिए होता है। उसमें यह नहीं होता कि हमने किसी फलाह बंदे को वजीर आजम बनाना है या फलाह बंदे को हमने सदर बनाना है। वो मुल्की मफादात के लिए लोग इकट्ठे होते हैं और उसे सियासी पार्टी कहा जाता है, लेकिन ये किसी एक शख्स को प्रमोट करके उसे फलाह फलाह या सारे ओहदे दिलाना, ये उसके फैन क्लब के लोगों का ऐसा होता है। और उस फैन क्लब के ऊपर भी अब एक और क्लब ने कब्जा कर लिया, वो है जो है वो सोशल मीडिया क्लब। अब इमरान खान का जो असल फैन क्लब था वो पीछे हो गया है। उस फैन क्लब के लोगों को तो कोई पूछता नहीं है, वो लोग तो कहते हैं कि भाई अगर इमरान खान से जुर्म हुआ है तो इमरान खान वो अपनी सजा काट के जेल से बाहर आ जाएगा, आप उसका मुकदमा लड़ो, अगर आपके पास उस मुकदमे के एंटी दलायल है तो वो जाके अदालतों के अंदर दो, लेकिन वो दलायल अदालतों के अंदर तो देते नहीं है। अदालत के अंदर बार बार इल्तवा मांगा जाता है और सारी तवज्जो ये होती है कि हमने किसी सूरत जो है वो इमरान खान को जेल में नहीं रहने देना। बेशक इमरान खान ने हजारों क्राइम किया, वो कहते भी है कि है, वो नहीं कहते कि इमरान ने क्राइम नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि इसके बावजूद इमरान खान साहब हमारे लिए महात्मा है। तो ये जो सोच है ये सोच अच्छी नहीं है, ये मुस्बत सोच नहीं है। किसी भी मुहज्जब माशरे के अंदर ऐसी सोच को पजीराई नहीं दी जा सकती। और अब सोने पे सुहागा ये है कि उसके ऊपर भी जो यूट्यूबर ने कब्जा कर लिया है, ये जो फेसबुक के लोगों ने, सोशल मीडिया के लोगों ने कब्जा कर लिया है, और टिकटॉकर ने कब्जा कर लिया, और टिकटॉकर अपना प्रोग्राम बेचने के लिए, अपनी व्यूवरशिप के लिए ऐसे ऐसे जो है वो शगुफे छोड़ते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं। रात को एक बंदे ने कहा कि इमरान खान सुबह फजर की नमाज के वक्त जो है वो अडियाला जेल से बाहर होंगे और उनकी गाड़ी जो है वो अपने घर की तरफ रवाना दवा होगी, और फिर चंद दिनों के बाद जो है वो आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता और उड़ के इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। तो जो बंदा भी इस तरह का ब्लंडर करता है, जो भी इस तरह की झूठी खबरें देता है, पीटीआई के या इमरान खान के जो फैन क्लब है वो सारे के सारे उसका प्रोग्राम देखना शुरू हो जाते हैं, उसे धड़ाधड़ लाइक मिलते हैं और वो अपना पैसा कमाता है, फिर उसे जो है वो इससे जो है वो मजीद हौसला अफजाई होती है और वो अगले दिन इससे बड़ा झूठ बोलता है। तो ये झूठ बोलना, तवातर के साथ झूठ बोलना और एक दूसरे से बढ़ के झूठ बोलना, ये जो इमरान खान का नया सोशल मीडिया फैन क्लब है, इसने जो है इसका ये समझे कि अपने अपनी एक जिम्मेदारी ले रखी है कि हमने जो है वो पीटीआई के जो सादा लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो आज भी जो है वो चाहते थे कि यार दूसरी दो पार्टियों से जो काम नहीं हुए वो हम करेंगे, तो उन्हें वरगला के जो है वो इस्तेमाल कर दिया। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन और मुज़ाकरात जहाँ पे हो रहे होते हैं वहां पे, जहाँ पे सेनेट के अंदर, हर जगह से जो है वो यूट्यूबर खड़े होकर अपना लाइव शो कर रहे होते हैं, और उस लाइव शो में एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो यूट्यूबर जैसे मतीउल्लाह जान सबको दे ले, तो वो खड़ा होके जो है वो डिक्टेशन दे रहा होता है कि पीटीआई को असल में ये कहना चाहिए, पीटीआई की क़यादत को यूं खड़ा स्टैंड लेना चाहिए, पीटीआई को हुकूमत के सामने ये मुज़ाकरात करने चाहिए, ये जो है वो मुतालबात रखने चाहिए। आप देखें कि मीडिया का काम ये नहीं होता वो किसी पार्टी को डिक्टेशन दे, वो पार्टी ने जो पॉलिसी ली है, जो भी उसकी लाइन है, वो अवाम के सामने लेके आता है, लेकिन वो उन्हें वरगलाता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर उल्टी गंगा बहती है और इस शायद हमारे जो पार्टी के सरबराहान हैं वो भी अब इसके आदी हो गए हैं, और उन्हें हर वक्त जो है वो अपने हक में तारीफें सुनना जो है वो पसंद है। वो जेल में बैठे हुए भी ये सोचने पर आमादा नहीं है कि हमसे कौन कौन सी गलतियां हुई और उन गलतियों की वजह से आज हमें ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो इमरान खान का साहब की भी जो शख्सियत है वो भी इसी का असीर हो चुकी है।
1: तो जंजुआ साहब, वे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपने केसेस का जो है वो फेस करना चाहिए। आपकी बात सही है कि पार्टी अपनी जगह है लेकिन केसेस अपनी जगह है, केसेस लड़े, वकला उनके पास मौजूद है, टीम उनके पास मौजूद है, अपनी केसेस होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बढ़िया मीडिया के एंकर हैं, अपना क्या नाम है, वो अक्सर आप भी उनको सुनते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये 9 मई का वाकया हुआ, ये जनरल फैज साहब और इमरान खान की प्लानिंग थी। अगर स्टेट के खिलाफ कोई बगावत करता है तो उसका भी तो कोई कानून होगा।
0: आप जिस मुल्क में मैं और आप रहते हैं यहाँ पे मुझे आप किसी भी शख्स के अंदर जो बड़े बड़े जो है वो ताकतवर बनते हैं और बड़े बहादुर बनते हैं, उन्हें बोले कि आप वज़ीरे आज़म को गाली दिखा, एक गाली निकाल के मुझे दिखा दो, आप उस सिस्टम के ऊपर जो लोग बैठे हैं आप उन्हें ये कह के दिखा दो अपने वीडियो व्लॉग के अंदर कि ये करप्ट है और फिर देखो आपका अंजाम क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह का मस्खरापन इतना आम हो चुका है कि हमारी आवाम जो है वो इसके अलावा कोई खबर सुनने को तैयार नहीं है कि उन्हें यह खबर मिले कि मुर्गी ने चूंग मार के जाद को नीचे गिरा दिया, या ये खबर हो कि राह चलते हुए राहगीर ने कुत्ते को काट लिया। वो जो अच्छी खबर होती है वो नहीं सुनती, उन्हें जो है वो ऐसी खबर सुनने की आदी हो गई है हमारी आवाम के जिसका कोई सर पैर नहीं होता। और फिर वही जाके लोग जो है वो नाई की दुकान पे या किसी मिनाजुल कुरान के सेंटर पे जाके इस तरह की लायानी बातें करते हैं और वहां पे अपना एक नया फैन क्लब बनाते हैं और फिर वो वहां पे बैठे हुए लोग इस शख्स को अपना जो है वो एक रहनुमा बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तमाशा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, यही बैरून मुल्क जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं ये कर रहे होते हैं और इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान को इन चैलेंजेस का सामना है। लेकिन राजा साहब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की जो बदमाशियां हैं, इस तरह की जो हरकतें हैं, उनका अंजाम ये होगा कि आइंदा जब ये लोग पाकिस्तान जाना चाहेंगे तो इनके वीजे नहीं लगेंगे, ये जब ऑनलाइन वीजा अप्लाई करेंगे तो इन्हें जो है वो हमारे जितने सफारतखाने हैं उनका वीजा रिजेक्ट करेंगे, वो कहेंगे कि आप पर्सनली आए, और जब ये पर्सनली वीडियो बेल के ऊपर आएंगे तो वहां पे वो आइडेंटिफाई होंगे कि ये तो वही लोग हैं जो पाकिस्तान को गाड़ियां देते थे, फील्ड मार्शल को गाड़ियां देते थे। तो दहशतगर्दी के जुर्म की वजह से इनके जो आईडी कार्ड्स हैं वो ब्लॉक होंगे और फिर इन्हें समझ आएगी कि हमने पाकिस्तान जाना था, अपने अपने वालदैन को मिलना था या अपनी जायदाद अपनी जमीनों को का बंटवारा करना था, तो हमारे लिए क्या क्या सीटें खड़ी हुई हैं। चले ये लोग तो ऐसे हैं कि नहीं नहीं पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन इनकी वजह से एक आम आदमी जो है वो बुरी बुरे तरीके से मुतासर होगा और उसके लिए भी अपने मुल्क में जाना जो है वो मुश्किल होगा। और अगर वहां पे इसका दहशतगर्दी में नाम है तो उस जब इसका डोमिसाइल आएगा कि ये बंदा दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व है तो ये जहाँ पे या इनके बच्चे अप्लाई करेंगे जहाँ पे, आप देखें ओसामा बिन लादेन के बेटे बेटा अगर आपकी किसी कंपनी में आता है और जॉब अप्लाई करता है तो आप नहीं देंगे, आपको पता है कि यार ये तो एक दहशतगर्द का बेटा है और ये बंदा तो जो है उसने तो पूरी दुनिया को वक्ता डाल दिया था। तो इसी तरह ये लोग जो है इनके बारे में भी इसी तरह का गुमान होगा कि यार इन लोगों से पनाह अच्छी, इन लोगों को बेहतर है कि अपने माशरे से, अपने कल्चर से, अपनी कंपनी से और अपने खानदान से, अपने आप से, इन्हें अपने इलाके से दूर ही रखा जाए। तो ये अगर इन लोगों को इस चीज का इदराक नहीं है तो जब इदराक होगा उस वक्त पानी सर से गुजर चुका होगा और इन्हें इनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
1: जंजुआ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप थिंक टैंक है, एनालाइज करते हैं, तो ये जो हर 5-6-7 साल बाद जो एक स्टेज बनाया जाता है उस पर ये तमाशा लगाया जाता है, उससे पहले इंग्लैंड में मुलाकातें की जाती हैं और उसके बाद जो अमल दरामद शुरू हो जाता है, उसके चौधरी सरवर साहब भी एक्टिव हो जाते हैं और दूसरे लोग भी एक्टिव हो जाते हैं, आपके किबला हजूर भी एक्टिव हो जाते हैं, चूँकि वो सारे प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने करीब से देखी हैं।
0: अभी आप देखें क्यूम निजामी ने जो जिसका किसी दौर में वो पीपल पार्टी के दौर में या जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में वजीर भी रहा है, लेकिन बढ़ापा है, अब उसका पीपल पार्टी के अंदर कोई उसे पूछता नहीं है, कोई उसे मीडिया के अंदर पूछता नहीं है, तो उसका भी दिल करता है कि मेरा भी किसी अखबार में नाम हो, चंद लोग मुझसे भी मोहब्बत करने वाले हो, चंद लोगों को पता हो कि मैं भी जो है वो सबका लीडर था। तो अब उसने एक नया बतंगड़ छोड़ा है कि ताहिरुल कादरी पाकिस्तान आ रहे हैं, और मैं आपको चैलेंज देता हूं आज के प्रोग्राम में कि ताहिरुल कादरी कभी जिंदा पाकिस्तान नहीं जाएगा, उसकी जब भी जाएगी मूर्ति जाएगी, और इसलिए वो वापस नहीं जाना चाहते ताहिरुल कादरी साहब। हालांकि वहां पे उन्होंने जो महल बनाया, उनका दिल करता है मैं वो सऊदी हुकूमत से खूब सऊदी शहजादों से ज्यादा खूबसूरत महल है जो ताहिरुल कादरी साहब ने बनाया है। उसका एक बेड इतने इतने का है कि आप यहाँ पे जो है वो 60-70 हजार पाउंड की या डॉलर की गाड़ी बेचे तो उसका उस माल के अंदर जो बेड रखा हुआ है, जो डाइनिंग टेबल है, वो एक आप खरीद सकते हैं। तो इतना उसके ऊपर लक्जोरियस काम हुआ है, इतना उसके ऊपर जो है वो करोड़ों के हिसाब से चित्रकारी हुई है, दुनिया के कई कई ममालिक से उसकी टाइलें गई हैं, डेकोरेशन गई है। तो दिल उनका भी करता है कि मैं वहां पे जाऊं, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर मैं वहां पे गया तो मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा है, अगर हुकूमत ने मुझे जेल में डाल दिया तो मेरा तो वो सारा जो भूत है शेखुल इस्लाम होने का वो तो निकल जाएगा। तो लिहाजा चाहते या ना चाहते हुए मैं यूरोप में ही रहूं। तो आप देखें वो कैनेडा से 20 घंटे की फ्लाइट पकड़ के बर्तानिया में आते हैं, तो बर्तानिया के अंदर रहते हैं, यूरोप में जाते हैं, यहाँ पे सारी अय्याशी होती है, पूरा कुंभा जो है वो फैमिली हॉलीडे करता है, लेकिन यहाँ से वो 5 या 6 घंटे की फ्लाइट लेके अपने भाई का नमाज जनाजा पढ़ने भी नहीं जाते। यहाँ से वो फ्लाइट लेके मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में शामिल होना भी गुवारा नहीं करते। यहाँ से वो 6-7 घंटे की फ्लाइट लेके आप खुद अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, जो उन्होंने अपना मकबरा बनाया है जो अल मारूफ गोशाए दरूद है, उसे भी देखने नहीं जाते, और यहीं से वापस जाते हैं और फिर टेलीफोन के ऊपर खिताब करते हैं। तो ये कितनी ज्यादती है, वहां पे उनके मदा वहां पे फैन बैठे हैं कि क्यों हजूर आपने तो कहा था कि 90 की दहाई में दुनिया भर में मुस्तफ़ी इंकलाब आ चुका होगा, तो वो मुस्तफ़ी इंकलाब पाकिस्तान में तो नहीं आया लेकिन उनकी जात में आ गया, उनके खानदान में आ गया। और आप देख सकते हैं कि 90 की दहाई में कादरी साहब की जो दाढ़ी है वो 8 इंच थी, और जो है उनका रहन सहन बिल्कुल एक आम आदमी की तरह था, बल्कि उनके पास अपने बच्चों को दूध पिलाने के पैसे नहीं होते थे। और आज वो खरबपति हैं, आज उनका वो जो लिबास रात को एक दफा पहनते हैं वो दोबारा दूसरी रात अगली रात को भी नहीं पहनते, जो कपड़े वो आज पहनते हैं वो दोबारा नहीं पहनते, जो शूज उनके पास एक है जो आज होते हैं वो अगले दिन नहीं पहनते। वो कादरी साहब के बेटे की आपने तस्वीर मेरे साथ देखी होगी जो बड़ी वायरल हुई थी कि मेरे साथ उनका बेटा खड़ा है, ये असल की बात कर रहा हूँ, उसके एक पांव में चप्पल है हवाई चप्पल है जिसे वो कहते थे बाटा की चप्पल, और दूसरे में जो है वो पेशावरी खेड़ी है। तो ये इनकी हालत होती थी, और आज वो बंदा जो है वो बंदे से हाथ बाद में मिलाता है और 10 टिशू से जाली पसीना साफ करता है, अपने हाथ साफ करता है कि मुझे जो है वो कई लोगों के जरासीम ना लग जाए। तो उनको उठने बैठने के ऊपर 60-70 हजार पाउंड के सेशन करवाए जाते हैं कि जब आपने अपने गरीब गुरबे या डोनेशन देने वालों से मिलना है तो उस वक्त आपने कैसे मिलना है, जब आपने अमीर लोगों से मिलना है तो उस वक्त कैसे मिलना है, जब कोई बड़ा फंड देने वाला होगा तो उसका आपने इस्तकबाल कैसे करना है, और जब छोटे लोग जो सिर्फ आपकी पोस्टें शेयर करते हैं जब आपने उनसे मिलना है तो किस हकारत से उनकी तरफ देखना है, ताकि वो सारी जिंदगी इसी इंतजार में रहे कि किबला ने एयरपोर्ट से निकलते हुए मुस्कुरा के तेरी तरफ देखा था या मेरी तरफ देखा था, और फिर जो है वो गाड़ी में बैठ के हाथ ला के चले गए थे, और फिर जो है ये लोग जो है वो अपने अपने रेस्टोरेंट पे जाके खाना खा के 2-3 घंटे की फ्लाइट लेके वापस अपने घरों को चले जाते हैं। तो ये तो इन लोगों का हाल है। ऐसे छिछोरों से अगर आप इंकलाब की उम्मीद लगा के रखें, तब्दीली की उम्मीद लगा के रखें, तो तब्दीली नहीं आने वाली। मुझे आज भी कादरी साहब की ये बात जो है वो मेरे कानों में रस घोलती है, जब उन्होंने कहा कि इमरान खान वो ऐसा शख्स है कि ये तो पाकिस्तान में काउंसलर बनने का अहल नहीं था, और उनका गिला ही पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में ये है कि मैं जिसको काउंसलर बनने का अहल नहीं समझता था आपने उसे वजीर आजम बना दिया, और मेरे साथ आपने झूठे वादे किए, मुझसे लॉन्ग मार्च करवाए और पैसे दे के मुझे वो तनख्वाह दिया, ओहदा आपने कुछ भी नहीं दिया। तो ये एक तलख हकीकत है, इसका जितना जल्दी जल्दी इदराक हमारी कौम को होगा उतना ही उसका भला होगा, वरना ये है कि आज ये लोग कादरी साहब के फैन हैं और पैसा सारा ही उनके ऊपर खर्चते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जिनके पास अपने घर की मॉर्गेज अदा करने के पैसे नहीं है, ऐसे लोग भी जानता हूं जो अपनी मिसेज को एक जो है वो 10 pounds بھی جو ہے وہ ہفتے کے نہیں دیتے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں کہ یہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیتا, لیکن وہی شخص جب قادری صاحب آتے ہیں تو 5-6 pounds کا خرچہ کر کے نئے کپڑے پہن کے ادھر جا کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ ڈونیشن دے رہا ہوتا ہے. یہ ذہنی پراگندگی ہے, یہی غلامانہ ذہنیت ہے. ورنہ اگر آپ سوچیں تو ہمیں یہ مولوی بتاتے ہیں نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے, اور یہی بتاتے تھے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ باہر سے ایک وفد آیا اور وہ اس تلاش میں تھا کہ ہم نے امیر المومنین عمر فاروق سے ملنا ہے, اور راستے میں اس نے دیکھا کہ چٹان کے اوپر سر رکھ کے ایک شخص لیٹا ہے اور اس سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ عمر فاروق کون سا ہے, عمر فاروق سے ہم نے ملنا ہے. اور اس نے کہا کہ آپ جائیں وہاں پہ اس کا دربار ہے. تو جب وہ وہاں دربار میں پہنچے تو دیکھا وہی شخص بیٹھا ہوا ہے, تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو وہی شخص ہے جس سے ہم نے راستہ پوچھا تھا. آج مجھے بتائیں کہ پاکستان کے کس مولوی کا, کس شیخ الاسلام کا رہن سہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے, کس کے کپڑے پیوند لگے ہیں, کس کے گھر میں جو ہے وہ فاقے ہوتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں کہ ہمارا تو ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ ہم تو جس غوث العظم سیدنا غوث العظم کا نام لے کے ہم جو ہے وہ 11th شریف اور اس طرح کے ختم جو ہے وہ کروانے چاہیے, مگر ان کے ختم اور درود جو ہے وہ روزے سے ہوتے تھے, وہ اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے تھے, اور ہم جو ہے وہ بریانیاں بناتے ہیں, بریانی کی دونی دیتے ہیں اور رنگ برنگی کھانے دیتے ہیں. تو یہ ہمارا جو علماء نے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں اسی طرح کے جو آج خود بنے ہوئے علماء ہیں, شیخ الاسلام ہیں یا ان کے بیٹے ہیں جن کا رہن سہن کھرب پتی لوگوں جیسا ہے, بڑے بڑے امیر بادشاہوں جیسا ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی وجہ سے نئی نسل اسلام سے متنفر ہو رہی ہے, وہ اسلامی کلچر سے متنفر ہو رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہمیں تو کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن بڑا سادہ تھا, ہمیں ایک بھی مولوی دکھا دے, ایک پیر دکھا دے, ایک کوئی مذہبی ایسا بندہ دکھا دے جس کے آج کے دور میں کپڑے جو ہے وہ پیوند لگے ہوں, جس کا رہنا سہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اتباع میں ہو. ان کے پاس خربوں کی گاڑیاں ہیں, خربوں کا پروٹوکول ہے. جب یہ چلتے ہیں تو 40 بندے آگے ہوتے ہیں, 40 بندے پیچھے ہوتے ہیں, اور یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں کہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں. تو ایک ہی اونٹ ہے, کیا صحابہ کرام ساتھ نہیں تھے؟ کیا وہاں پہ استقبال کرنے والے نہیں تھے؟ نہیں تھے, سب کچھ تھا, مگر اس کے اوپر باری باری کبھی غلام اونٹ کے اوپر سواری کرتا ہے, کبھی آقا سواری کرتے ہیں, اور جب مدینہ شریف میں داخلہ ہوتا ہے تو غلام اس کے اوپر بیٹھا ہے. نہیں کہا جاتا کہ یہ ہمارا پروٹوکول ہوگا اور جو ہے وہ سارے لوگ آگے پیچھے ہوں گے اور اس طرح کا ایک تماشا لگا ہوگا جیسے یہ مولویوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے اور ہمیں اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ ہمارے اوپر اس طرح کے لوگ مسلط ہو گئے ہیں کہ جن کا نہ کوئی دین سے تعلق ہے, نہ ان کا پاکستان سے کوئی تعلق ہے, نہ انہیں پاکستان سے کوئی ہمدردی ہے, نہ انہیں اسلام سے کوئی ہمدردی ہے. انہیں صرف اور صرف ہمدردی یہ ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کھرب پتی ہوں, وہ عیاشیاں کریں اور عوام کے پیسوں سے, اور عوام پیسے دے چیریٹی کے نام پہ, اور اس کا جو ہے وہ کریڈٹ یہ لوگ خود لیتے ہیں کہ فلاں مولوی نے, فلاں پیر نے, فلاں شیخ الاسلام نے, دیکھے کیا بنا دیا بھائی, کیا خاک بنا دیے, کیا یہ پیسے اس نے اپنی طرف سے کھینچے ہیں؟ کیا آج تک مجھے کسی ایک پیر کا, کسی ایک مولوی کا, کسی ایک شیخ الاسلام کا مجھے جو ہے وہ ٹیکس ریکارڈ نکال کے دکھائے کہ یہ کتنا ٹیکس پے کرتا ہے, اس کی انکم کتنی ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے دکھا دے کہ چلے میں باقی مولویوں کی بات بعد میں کروں گا, مجھے آج تک کوئی مناجی دکھا دے کہ طاہر القادری کا بزنس کیا ہے, طاہر القادری کی انکم کیا ہے, طاہر القادری کے بچوں کا بزنس کیا ہے, کیا آج بھی وہ اسکولوں کے بسے بیچ کے یہ کھرب پتی ہو کے یاچیاں کر رہے ہیں؟ راجا صاحب آج کے پروگرام کی وساطت سے میں ڈنمارک میں, ناروے میں, جہاں جہاں یہ آپ کا پروگرام جا رہا ہے, فرانس میں, میں چیلنج کرتا ہوں, بلکہ وہ ہمارے راجا صاحب جو جیلم سے ہیں, دینا سے ہیں, جو آج کل مناج القرآن کے جو ہے وہ بڑے عہدیدار ہیں, بڑی محبت ہے انہیں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مجھے بتا دیں کہ طاہر القادری کا کاروبار کیا ہے, طاہر القادری کے بچوں کا روزگار کیا ہے, اور وہ کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں, اور وہ بزنس ہے کہاں پہ, انہیں مجھے ان کے بزنس کے ٹیکس کے گوشوارے دکھا دیں. आई चैलेंज यू, नोबडी विल एक्सेप्ट दिस दिस चैलेंज। जी राय साहब,
1: शाह जंजुआ साहब आपने बड़ी तफसील से बताया, लेकिन शाह जंजुआ साहब अक्सर आप कपड़ों का जिक्र करते रहते हैं, एक दिन पहनते हैं दूसरे दिन नहीं पहनते, क्या वो कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं कि वो पहने नहीं जा सकते?
0: नहीं, इनके ठेके हैं, बड़े बड़े जो डिजाइनर कंपनियां उनके साथ ठेके हैं। मैं और आप लोग अगर हमें बड़ा ही हमारे पास जो है वो शहनशाही आएगी, हम बड़े खुश होंगे, तो हम किसी नेक्स्ट पे चले जाएंगे, किसी प्रिंसिपल शॉप पे चले जाएंगे, किसी अच्छी दुकान पे जाएंगे और वहां पे 100 पाउंड का कोई शूज ले लेंगे, वहां पे कोई 100-150 पाउंड का कोई जो है वो सूट ले लेंगे। लेकिन ये ऐसी शॉपों के नजदीक से गुजरना भी अपनी तोहीन समझते हैं। इनके जोड़े, इनका लिबास, इनकी बहुओं के लिबास आप देख लें, वो कपड़े ऐसी डिजाइनर शॉप्स के ऊपर बनते हैं कि जहां से कोई आम बंदा उसकी उस रास्ते से नहीं गुजर सकता। वो इतने इतने महंगे होते हैं, फिर उनके साथ पर्स बनते हैं, बैग बनते हैं, उसी मैचिंग उनके साथ जो है वो जैकेट्स बनती हैं, कोट बनते हैं, शूज लिए जाते हैं, और फिर उन कंपनियों के साथ इनका मुआहदा होता है कि ये एक वक्त की बात नहीं है, आपने ये बनाते जाना है और इन्होंने खरीदते जाना है। आप जरा देखें इनका लिबास, ये आपके पास सोशल मीडिया आप डालें, बाजी गजाला डाल लें, कादरी साहब की बाकी बहुएं डाल लें, फिर आप इनका लिबास दे। मैं तो दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इन्हें रिज़्क़े हलाल दे और उससे ये आपकी चीजें खरीदें। लेकिन आप कादरी साहब के कपड़े देख लें, जब वो आते हैं यहाँ पे तो वो जितने बदबूदार कपड़े होते हैं, जितने पुराने कपड़े होते हैं, जितने कपड़े उन्हें छोटे हो जाते हैं या वो उनका साइज अच्छा नहीं रहता, वो किसी एक भी जो है वो जाहिल अपने मरीद को उसके गले में पहना देते हैं, बेशक वो उसे पूरा हो या ना हो, तो वो बंदा भी जो है वो कादरी साहब का कोट पहन के खुश हो जाता है, बेशक वो उसकी उसे जो है वो बिल्कुल उसका साइज ना हो, और वो देख रहा हो कि यार इसके अंदर से बदबू आ रही है, लेकिन वो क्या करेगा, अगर वो इस तरह की कोई जो है वो नाराजगी का इजहार करेगा तो जितने कादरी साहब के बाकी फैन है वो तो कहेंगे कि यार ये ना शुक्र है, इसको तो चाहिए कि कादरी साहब जो है वो अगर खांसी करें, अगर उन्हें फ्लू लगा हुआ और वो अपना नाक साफ करके भी अगर उसके ऊपर टिश्यू के ऊपर रख के दे, तो उसका फर्ज यह बनता है कि वो उठा के जाए और अपनी वाइफ के चेहरे पे मले के देखे ये किबला की खुशबू आई है। तो इस तरह की जहनीत है जो विराजन कुरान के अंदर है, वरना जो है वो हकीकत आजकल सब पे यहाँ है, और हकीकत सिर्फ ये है कि ये नाकाम लोग हैं, ये फेल्ड है, ये सिर्फ फैमिली प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, और सिर्फ अपने प्रोटोकॉल के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये अगर किसी जगह पे जॉब करें तो शायद इस काबिल नहीं है कि इन्हें किसी शॉप के ऊपर जॉब भी मिले। तो ये बाप की बनाई हुई चैरिटी से जो इन्होंने मदरसे बनाए हैं, वहां पे कोई चेयरमैन लगा हुआ है, कोई प्रेजिडेंट लगा हुआ है, और किसी का पता नहीं, एक एक बच्चे के पास 10-10 अहदे हैं। किबला हुजूर ने भी तो तकसीम की हुई है ना, उन्होंने तकसीम की है कि मसलन जो पाकिस्तान से इनकम आएगी या दुबई से जो प्रॉपर्टी के बिजनेस से इनकम आएगी वो बड़े बेटे के लिए, जो यूरोप से आएगी वो छोटे बेटे के लिए, जो कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया से आएगा वो जो है वो पोते के लिए। तो इस तरह उन्होंने भी अपनी बादशाह के जो है वो इस तरह जो है वो उसकी हदबंदी की हुई है और उसे जो है वो तक्सीम किया हुआ है अपनी इनकम को। जी राय साहब,
1: युवा साहब आपने बहुत सारी बातों का अहाता किया, लेकिन एक बात बार बार जहन में आती है, लोग सवाल भी करते हैं, पूछते भी हैं, और आप फिर भी उसके बावजूद आप किबला हुजूर कहते हैं, आपको इतनी मोहब्बत है उनसे, शायद युवा साहब वो 65 साल वाली उम्र का क्या बना, क्या वो कैंसिल होगी या प्रोजेक्ट?
0: वो जो किबला को आनी थी, देखे जब तक किबला हुजूर की जो एज है वो 63 ईयर थी, तो उस वक्त तक जो है वो फिर भी वो बहुत सारी चीजों का हया करते थे। उनका जो तरीका कार था वो ये था, चलो 10 झूठ बोले हैं तो एक आध सच भी बोल दो। तो जो ही उम्र उनकी जो है वो 63 वर्ष से ऊपर हुई है, और वो जो उनके ऊपर मौत आनी थी जिसकी उन्हें गारंटी दी गई थी कि 63 वर्ष में या 64 वर्ष में आएगी, वो नहीं आई, तो उस किबला जो है वो उसके बाद जो है वो इतने मुंहजोर हो गए कि अब वो इस्लामी कानून को, इस्लामी सकाफत को, अपने किसी वादे का उन्हें कोई हया नहीं है। देखे ना, एक तरफ आप सोशल, मैं अभी आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप उठाएं जरा फेसबुक और फेसबुक के ऊपर आप लिखें डॉक्टर ताहिरुल कादरी, तो आपको नजर आएगा कि उन ताहिरुल कादरी जो है वो हर चीज की मजम्मत कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पे सियासी हैं, पाकिस्तान के हालात की उन्हें इतनी खबर है کہ جتنی کسی پرندے کو بھی نہیں ہوتی، جتنی حکومتیں وقت کو نہیں ہوتی، لیکن اسی طاہر القادری کو فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایران اور امریکہ کے اندر ہو رہا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے کبھی بیان نہیں سنا ہوگا اب طاہر القادری کے منہ سے کہ یہ جو اتنا فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر تباہی ہوئی ہے، میں اس کی بھی مذمت کروں. کسی مناجی کے منہ سے آپ نے اس کی مذمت نہیں دیکھی ہوگی. آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ امریکہ نے جو حملہ کیا ایران کے اوپر نتیجہ ناجائز ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ جو حوثی ہے یہ مکہ اور مدینہ کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کو قبول نہیں ہے. کبھی آپ نے ان کے منہ سے یہ تعریف نہیں سنی ہوگی کہ یہ جو پاکستانی حکومت نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے اوپر حملہ، پاکستان پہ حملہ، حرمین شریفین کے اوپر حملہ، ہم اس کا بدلہ لیں گے اور کسی کو اس کی اجازت نہیں دے گی، اور ایسا حملہ کرنے والے کی جو جسارت ہے اسے کچل دیا جائے گا. کبھی آپ نے یہ کسی مناجی کے منہ سے نہیں سنا ہوگا. لیکن سنا کیا ہوگا، آپ ذرا فیس بک کے اوپر کھول لیں پیج تو آپ کو ہنسی آئے گی. لکھا ہوگا کہ جی طاہر القادری کے بغیر دنیا میں انقلاب نہیں آ سکتا. طاہر القادری کے باپ کو بھی یہ خبر نہیں ہوگی کہ یہ بیان دیا کس نے. لیکن بس ایک پیڈ میڈیا ہے، پیڈ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ اپنی طرف سے بیان داغ رہے ہوتے ہیں کہ قادری نے یہ کہا، طاہر القادری کے بیٹے نے کہا، طاہر القادری کے مصر نے یہ بات کہہ دی، اس کی بیٹی نے یہ بات کہہ دی، بہو نے یہ بات کہہ دی. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ پکچریں اٹھاتے ہیں. پکچریں بھی آپ دیکھیں تو اللہ ماشاء اللہ. میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ یہ جو آج کل آپ یہ فتنہ دیکھتے ہیں کہ درباروں کے اوپر ڈول بج رہے ہیں، نعت خان آتا ہے اور نعت خان جو ہے وہ بیلے لیتا ہے اور طرح طرح کے تماشے کرتا ہے، میوزک چلتا ہے، گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھتا ہے، تو اس کا مجد کون ہے؟ یہ جو قاری شاہد نے آ کے تماشا کرتا ہے، اس قاری شاہد کو یورپ میں لانے والا منہاج القرآن ہے. سب سے پہلے بریڈفورڈ میں وہ آیا بندہ، اور اسے یہ ہر برائی اور فتنے کا موجد اس وقت منہاج القرآن ہے. ورنہ اس سے پہلے ہوتا تھا کہ جب بھی میلاد پاک کا مہینہ آتا، اسلامی تاریخ ہے کہ لوگ روزہ رکھتے، جب 27 مارچ آتا تو لوگ جو ہیں وہ عبادات کرتے، رات کو توبہ استغفار کرتے. پھر ہم نے دیکھا کہ جب بھی 27 مارچ آنا ہے تو چونکہ اپنا 27واں جو ہے وہ رمضان کی رات آنی ہے، تو پھر قادری صاحب نے کہنا ہے کہ جی آپ نے پورے پاکستان سے بسیں بھر کے لاہور لے کے آنی ہے، اور وہ بسیں لاہور میں آتی تو اس وقت جو ہے وہ قادری صاحب کا خطاب جو ہے وہ انہیں سنایا جاتا، اور قادری صاحب ساری رات خطاب کرتے. خطاب کر کے جو ہے وہ نہ تو نہ کسی نے توبہ استغفار کرنی، نہ جو ہے وہ کسی نے نماز پڑھنی، اور فجر کی نماز بھی نہیں لوگ پڑھتے تھے. لوگ جو ہے وہ دینا سے، جہلم سے، پنڈی سے جو ہے وہ دن کو بسیں لے کے نکلتے. کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، یا روزہ چلو کسی نے رکھا ہوا ہے، نماز نہیں ہے، وقت میں افطاری نہیں ہے. وہ لاہور پہنچنا، وہاں پہ کھانے پہ ٹوٹ پڑنا، کھانے کے بعد تراویح کسی نے 5 پڑھی، کسی نے 10 پڑھی، کسی نے 12 پڑھی، کسی نے 20 بھی پڑھ لی. اس کے بعد قادری صاحب کا خطاب سننا اور پھر بسوں میں بیٹھنے اور واپسی کروا دی. وہ جو 27ویں رات کا ایک اسلامی طریقہ تھا کہ توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ کے حضور سر مسجود ہونا ہے، وہ سارا ختم ہو گیا. وہ تقریر سننے کے اوپر اس کا اکتفا ہو گیا. آج یہی جو بدعات ہیں، یہی جو چیزیں ہیں، اس کو لے کے منہاج القرآن چل رہے. تو قادری صاحب جو ہے وہ انہوں نے جو اسلام کی تجدید کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پولیٹیکلی کمپرومائزڈ اسلام کے وہ نیریٹو ہیں، وہ جہاد کے نیریٹو نہیں ہیں، اور ایسے اسلام کے، ایسی روایات کے موجود ہیں جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن میں ان کی اصل نہیں ہے. بس یہی قادری صاحب کا شیخ الاسلام ہے. بلکہ ان کے بیٹے نے کہا ہے کہ دنیا دیکھے گی کہ قادری، وقت آئے گا کہ کہے گی کہ شیخ الاسلام نے یہ بات کہی تھی، شیخ الاسلام نے یہ موقف اختیار کیا تھا اور وہی آ کے. تو اگر ان کے بیٹے حسین کی اگر بات آپ مان لیں تو آئندہ آنے والے چند سالوں کے بعد دنیا یہ کہے گی کہ جب سیریا کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل حملے کر رہا تھا، جب ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کے حملے ہو رہے تھے، تو اگر وہ ان حملوں میں یہود و نصارہ کا موقف درست نہ ہوتا تو طاہر القادری اس کی مخالفت کرتے. اور طاہر القادری کی خاموشی اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی طرف سے تائید تھی کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ غزہ کو تباہ کر دو، ایران کو تباہ کر دو، سعودی عرب کے اوپر حملے کرو، میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم خاموش رہیں، گویا خاموش تائید، یہ طاہر القادری کا اسلام ہے اور یہی شیخ الاسلام کا موقف ہے۔ جی رائے صاحب،
1: جی وا صاحب، آپ کا قیمتی ٹائم ہے، آپ نے کہیں جانا بھی ہوگا، تو آخر میں آپ ہمارے سامعین ناظرین کو بتا دیں کہ یہ جو عقل کی آپ بات کرتے ہیں، لوگ جو جذبات سے سوچتے ہیں، انالائز نہیں کرتے، خود جو اسلامی کتب کو نہیں پڑھتے، قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کرتے، وہاں بدعت کے بارے میں پڑھتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا میں سب کو معاف کر دوں گا لیکن بدعتی کو معاف نہیں کروں گا، اس طرف تو جو نہیں دیتے، جو آپ نے ذکر ساری چیزوں کا کیا،
0: رائے صاحب یہ بدعت کو جو چھوڑ دیں، یہ تو شرک کے اندر مبتلا ہیں، یہ شرک کے اندر مبتلا ہیں، یہ قرآن و حدیث کو نہیں پڑھتے، ان کا آپ مجھے بتائیے کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے بیڈ میں سویا ہے، کرٹن بند ہے، رضائی کی ہوئی ہے اس نے، اور وہ یہی سوچ رہا ہے کہ جا میں لیٹا ہوں یہی ساری کل کائنات ہے، اسے آپ کیسے سمجھائیں گے کہ بھائی باہر تو روشنی ہو گئی ہے، دن کے دو بج چکے ہیں، وہاں پہ چہل پہل ہے، خریداری ہو رہی ہے، نظام چل رہا ہے، ساری دنیا جو ہے وہ جاگ چکی ہے، مگر چونکہ وہ سویا ہوا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو منہاج القرآن کے لوگوں کا یہی حال ہے، ان کی آنکھیں بند ہیں، اور ان کی آنکھیں، ایک آنکھ ان کی کانی ہے اور دوسری کھلی ہے، جو دوسری کھلی ہوئی ہے اس میں وہ صرف طاہر القادری کو دیکھتے ہیں، اس لیے ان کا شعور اجاگر نہیں ہوتا کہ یہ کسی اور کو پڑھے، یہ کسی اور کو سنے، یہ کوئی مطالعہ کرے تو انہیں پتہ چلے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ان کا جو قائد ہے وہ بھی کینیڈا میں بیٹھا ہے۔
1: جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا چلتا ہے، سوشل میڈیا پیسے کمانے کے لیے بہت ساری حرکات کی جاتی ہے، تو جب سٹیٹ کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے تو سٹیٹ کیوں ان کو اتنی زیادہ چھوٹ دیتا ہے؟
0: سٹیٹ کی ترجیحات غلط ہیں۔ آج پہلی دفعہ یہ ایسا ہوا ہے یا پچھلے ایک دو سالوں میں کہ فیلڈ مارشل نے ایک فیصلہ کیا کہ کسی بھی فسادی کو، کسی بھی انتہا پسند کو، کسی بھی جو ہے وہ تبدیلی کے خان کو، کسی بھی فتنہ پرور کو اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ ان کا دلیرانہ فیصلہ ہے۔ آج اس فیصلے کے اوپر وہ قائم ہے، اور بتدریج پاکستان کے اندر انتہا پسندی اور دہشت گردی کو ختم کر رہا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ حکومت اس پہ قائم رہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اب کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ ڈی چوک میں جا کے قبریں کھودے، بلکہ وہ تو اپنی، جنہوں نے قبریں کھودی تھی وہ اپنی قبر میں دفن ہونے کے لیے بھی زندہ نہیں آنا چاہتے، ان کی مورتی آئے گی۔
1: جنجوا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا،
0: شکریہ رائے صاحب۔
1: سامعین ناظرین، یہ تھے شاہ جنجوا صاحب جو کہ برطانیہ کی فضاؤں سے بات کر رہے تھے۔ سامعین ناظرین، ہمارا کسی کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بات کرنا چاہے، کوئی اس پر روشنی ڈالنا چاہے، کوئی اپنی دلیل دینا چاہے، کوئی بھی منہاج القرآن کا ساتھی آ کر اپنے ٹائم لے کر بات کرنا چاہے، تو ان کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا پلیٹ فارم حاضر ہے۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

0: पार्किंग है वो बोर्ड जो लगा होता है उसके ऊपर लिखा होता है 3 घंटे की पार्किंग है, उसके ऊपर पार्क करते हैं तो उसका जो देना पड़ता है पता नहीं, मुझे उसका पता नहीं है, आप बता दीजिएगा। तो जो गाड़ी परमानेंट लोगों ने ली हुई अपनी चार्जिंग की फ़ीस परमानेंट बिलफर्ज 900 करोना है, 1000 है, 1200 है, 500 है, 700 है, वो तो इलेक्ट्रिक वाली स्टिक लगा के तो चले जाते 3 घंटे की, तो पार्किंग उनके लिए फ्री है।
1: ऐसी बात है राज साहब, कुछ जगह है जिनमें 3 घंटे की है, कुछ जगह जिसमें 1 घंटे की है, कुछ जगह जिसमें आधे घंटे की है पार्किंग चार्जिंग पे प्लेस पे, वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगह पे है, तो वो उधर वो लगाते हैं स्टिक लगा के वो चले जाते हैं। हाँ, अगर स्टिक वो जो नहीं चार रही है, कोई जुर्माने वाला आ जाता है, जुर्माने को उस टाइम से ज्यादा हो जाता है तो फिर वो जुर्माना लगा देता है। तो लेकिन ये भी काफी अरसा नहीं चलेगा, ये ज्यादा लोग जब मिस यूज करेंगे तो फिर को भी पता चल जाएगा कि ये इसको मिसयूज कर रहे हैं, तो फिर उसका कुछ हल निकालेंगे।
0: तो जैसा आपसे पूछूं, आपकी गाड़ी 3 घंटे में चार्ज हो जाती है अगर फास्ट चार्जिंग ना हो तो?
1: मैं राय साहब घर में जब लगाता हूँ ना, तो मैं 10 बजे लगाता हूँ अपने घर में, तो मैं सुबह उठ के 6-7 बजे देखता हूँ तो वो मेरी फुल हुई होती है गाड़ी।
0: लेकिन बाजार में तो 3 घंटे में नहीं चार्ज हो सकती?
1: नहीं, बाजार में नहीं होती, बाजार में नहीं होती थी।
0: तो क्या बार बार चार्ज करने से बैटरी को कोई नुकसान होता है?
1: नहीं, बार बार चार्ज करने, हाँ, लेकिन ज्यादा कैपेसिटी पे फुल 100% चार्ज करें फिर बैटरी को नुकसान होता है, उससे पहले बैटरी को नहीं नुकसान होता, क्योंकि वो तो जितनी दफा मर्जी अभी आप लगाते वो कोई इसका इशू नहीं होता, लेकिन ज्यादातर आप जब 100% इसको करते जाएंगे या हैवी पे, तो फिर गाड़ी इसकी बैटरी को डैमेज होने का खतरा होता है।
0: जो साहब, ये टैक्सी ब्रांच बहुत बड़ी ब्रांच है, चूँकि इसमें हमारे बहुत सारे लिसनर हैं, बात करते रहते हैं, तो ये मुस्तकबिल में क्या बनेगा?
1: मुस्तकबिल में ये जो है ना बहुत ही चेंजिंग आनी है, अब ड्राइवर फ्री गाड़ियां भी आ रही हैं, उनकी बात की जा रही है अभी का कुछ अरसे से, वो पता नहीं अभी हकीकत है या नहीं है, 1-2 साल के अंदर अंदर वो भी आ जाएंगी, जब वो भी आ जाएंगी तो गाड़ियां उस पे गाड़ी, फिर उसके बाद बिल्कुल ही सिस्टम चेंज हो जाएगा, तो ड्राइवर भी नहीं होंगे उस गाड़ियों में, तो गाड़ियां खुद ही चलेंगी, तो लोग बुक कराएंगे, गाड़ी घर आ जाएगी, बैठ के चले जाएंगे, और उसके बाद ये ड्राइवरों का ये सिस्टम और ये टैक्सी में कोई समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, क्या कितनी चेंजिंग, कितनी तेजी से ये चेंजिंग जो आ रही है ना, कोई समझ नहीं है कि क्या होगा इसका मुस्तकबिल।
0: अभी खबरें चलती रहती हैं, साथ साथ लोग जो है अपनी जो क्या अहमियत बढ़ाने के लिए भी खबर दे देते हैं कि गाड़ियां महंगी होने जा रही हैं, बिजली की गाड़ियां, उस पर टैक्स ज्यादा हो जाएगा, चार्जिंग के पैसे ज्यादा हो जाएंगे। लगता है जितनी गाड़ियां आगी वो तो वक्त के लिहाज से सस्ता काम होगा, महंगा होगा?
1: राय साहब, महंगा तो नहीं होगा, महंगा नहीं होगा, ये चार्जिंग जो है ना ये महंगी नहीं होगी, क्योंकि ये जिस तरह तेल और या बिजली या जिस तरह का हिसाब इनका होता है ना, उसी हिसाब से, ये नहीं कि गाड़ियां ज्यादा आ जाएंगी तो बिजली महंगी कर देंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि और दूसरा यह है कि जितनी गाड़ियां होगी कुछ ना कुछ आपको पता है मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने सेल भी लगाई होती है, जैसे मार्केटों पे होती है, तो कुछ जगह पे होती है कि ये फलां जगह पे है इतनी है, जो है ना आप देख ले सियाकल खो पे है, उन्होंने अपना जो चार्जिंग ऐप जो है उसमें लिखा हुआ है इतना इतना करेंगे तो इतने का होगा, और दूसरे क्यूएट का उसका लादा चार्जिंग है, दूसरा है लादा चार्जिंग, तो ये जो मार्केट में बैठे हुए लोग हैं ये कोशिश करेंगे ज्यादा ज्यादा उनके चार्जर इस्तेमाल किए जाए जो ना गाड़ी चार्ज करने के लिए, तो वो थोड़ा सा बेनिफिट तो लगाएंगे फिर, तो ये महंगा मेरे ख्याल में महंगा नहीं होगा।
0: जो साहब, आपको एक खबर देते चले, चंद लम्हे ब्रेकिंग न्यूज दी है सैयद तकीर हसन बुखारी शाह साहब, जो कि थिंक टैंक हैं, वो वेंस्टा पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं।
1: अच्छा जी, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी गल है शाह साहब जी, माशाल्लाह बड़े मुतर्रक इंसान है, और आपके रेडियो पे काफी इंफॉर्मेशन भी देते रहते हैं, और जो है ना पूरा मामलात जो कोपनहेगन में चल रहे होते हैं उनमें बातचीत भी करते रहते हैं, तो शाह साहब हमेशा सियासत में इन रहे हैं, डेने सियासत में भी और पाकिस्तानी सियासत में भी, डेने सियासत में काफी उनको नॉलेज भी है, वो पहले काफी अरसे से जो है ना हिस्सा भी ले चुकी है, रहते भी हैं, इन भी रहते हैं, और माशाल्लाह ये कोई नहीं है कि वेंसा पार्टी है या सोशल डेमोक्रेट है या कोई भी है या इन लिस्ट है, ये हम लोगों को सब पार्टियों में जाना चाहिए और सब पार्टियों के साथ हमें मिल के काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। अगर कोई पार्टी हमारे जो है एंटी है, तो जब हमारे लोग जाएंगे उसमें, जब बैठेंगे तो वो भी लोग देखेंगे कि, और हमारे लोगों के तासरात देखेंगे, बातचीत सुनेंगे, तो लोगों का उनके भी माइंड चेंज होंगे। तो जब उनके उनकी पार्टी में कोई जाएगा ही नहीं, तो फिर तो वो जो अपने अपने जेहन के मुताबिक जो उन्होंने फैसले करने हैं वो करेंगे, डट के करेंगे। तो इसलिए सब पार्टी, मेरा ख्याल है कि सब पार्टियों में जाना चाहिए। कोई भी पार्टी है जो हमारे खिलाफ भी है उसमें भी जाना चाहिए, हमारी माइट में भी है उसमें भी जाना चाहिए। सब पार्टियों में हमने रहना इधर है, हमने डेनमार्क में ही रहना है, हमारे बच्चों ने भी इधर रहना है। तो हमारे बच्चों को चाहिए कि इन पार्टियों में इन्वॉल्व हो, यानी सियासत में इन्वॉल्व हो। तो शाह साहब तो माशाल्लाह बड़े मुतहर्रिक है, माशाल्लाह अच्छी सोच के उन्होंने कुछ फैसला किया होगा।
0: जो सब हमारी सियासी पार्टियों का क्या मुस्तकबिल है डेनमार्क में?
1: हमारी सियासी, क्या पाकिस्तानी सियासत,
0: सियासी पाकिस्तानी सियासत की बात कर रहा हूँ?
1: हाँ जी राज साहब, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कोई मुस्तकबिल नहीं है इनका। हमारी पार्टी जो मैं जिसके साथ मुंसलिक था, जो मुस्लिम लीग काफ के साथ, आपको पता है काफी अरसे से जो मेरी, मैं जिम्मेदारियां अदा कर रहा था, तो जब उन पार्टियों ने मेरे जो है ना, पार्टी के कायद जो शुजा साहब जो थे, उन्होंने तो सालक साहब ने ऐलान कर दिया है ना कि बाहर हमारी कोई पार्टी का ओहदा नहीं होगा, किसी को हम कोई ओहदा नहीं देंगे। कोई अपनी मर्जी से कुछ लिखता रहे, कहता रहे, तो हर को उनको घर घर जाके तो नहीं कहना पड़ता ना इंसान को। जब कोई एक लीडर जो बयान देता है या कोई लीडर जो उनका बयान होता है उस पर ही अमल करना होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का कोई बाहर ओहदा नहीं है, सब बराबर है, किसी भाई को हम नाराज नहीं करते किसी कंट्री में भी कि इसको इसको दे दे उसको दे दे, ये नहीं है। और जो इशजा साहब ने पहले भी कहा था, फिर सालिक साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि आपने देखा भी था, आपने फेसबुक पे भी लगाया था, तो ये हमारी पार्टी का तो कोई ओहदा, मैं समझता हूं कि किसी मुल्क में भी उन्होंने कोई ओहदेदार नहीं अब रखा, सारे खत्म कर दिए हैं उन्होंने।
0: जय साहब आखिर में कुछ कहना चाहिए, एक मिनट है, दो मिनट है आपके पास, कोई मैसेज देना चाहें?
1: मैं समझता हूँ राजस्थान साहब को मिलजुल के रहना चाहिए, और हमें डेनमार्क में, डेनमार्क की पार्टियों में हिस्सा लेना चाहिए, और डेनमार्क में पार्टियां बना के उनके साथ अपनी कम्युनिटी के साथ मुंसलिक रहना चाहिए। कम्युनिटी को जो है ना, जो भी मामलात होते हैं हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के, हमारे बुजुर्गों के मसले मसाइल जो है, हमें उनको हल करना चाहिए। मैं समझता हूँ सबको मिलजुल के रहना चाहिए।
0: तो साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
1: थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी राय साहब, सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम।
0: सामान्य नाज़रीन, ये थे चौधरी शौकत जो कारोबारी शख्सियत है, उन्होंने अपना मैसेज दिया। सामान्य, हमारा किसी से मुतफिक होना जरूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है, उसके लिए हमारा टाइम हाजिर है।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नाब ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहुजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बस सामान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मजर सामाइन, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मजर सामाइन इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मजर सामाइन सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामाइन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पे मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किया है, लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वजीर आज़म साहब ने की, एक और ज्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। मुआज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड की उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के खिलाफ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने आयरलैंड में फिल्म बनाई थी और जिस्म पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को आयरलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही। फिर इस वजीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है, ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई, ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे। पिया कियास्को को बता दे डेनमार्क ने जो तरक्की की है وہ ڈنس کے فال کے فاسٹی سے نہیں کیے بلکہ انہی انواندرا لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندرا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
3: سامعین کرام, FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।